मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है कि चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे।

0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें गर्मी की जुताई का महत्व विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, रबी की फसलों की कटाई के बाद गर्मी की ऋतु में ज्यादातर खेत खाली हो जाते हैं। इन खेतों में गर्म हवा बहने से नमी समाप्त हो जाती है। खेत खाली पड़े रहने से अनावश्यक खरपतवार उग आते हैं, जो कि कीड़ों मकोड़ों के लिए आश्रय का कार्य करते हैं। ये कीड़े आसपास की फसलों में रोग व्याध की वृद्धि भी करते हैं, जिससे फसल की उपज एवं गुणवत्ता दोनों में कमी आती है। गर्मी की जुताई कर देने से ये खरपतवार तथा ज़मीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाते हैं। चूँकि खरीफ की फसल बरसात वाली फसल होती है, जिसके कारण बारिश होते ही या खेत में नमी होने पर बहुत से खरपतवार उग आते हैं, जो कि खरीफ की फसल को सीधे प्रभावित करते हैं। इन खरपतवारों से एक तो खरीफ की फसल की उपज कम हो जाती है तथा दूसरे इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं रह पाती। आजकल श्रमिकों की वैसे भी समस्या रहती है, जिससे खरपतवार नियंत्रण श्रमिकों के द्वारा समय से एवं कारगर ढंग से संपन्न नहीं हो पाता। अगर रासायनिक दवाओं से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो यह बहुत ही महंगा पड़ता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि गर्मी के मौसम में जब खेत खाली हो तो गहरी जुताई करके इन अधिकांश खरपतवारों से छुट्टी ले ली जाए। गर्मी की जुताई करते समय कुछ खास खास बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान में रखने की यह है कि रबी की फसलों की कटाई के तत्काल बाद गर्मी की जुताई कर दें, ताकि इस समय की नमी का लाभ उठाया जा सके। यदि जुताई करने में देर होती है तो मिट्टी कड़ी हो जाती है, ऐसी दशा में खेत की जुताई करना कठिन हो जाता है। हाँ, फिर यदि बारिश होती है या खेत में हल्का पानी

0: लगा करके फिर जब जुताई लायक हो जाए तो जुताई करनी चाहिए। दूसरी भी बात ध्यान देने की यह है कि जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा ये जुताई कम से कम 6 इंच गहरी हो, यानी कि खूब गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगाने की आवश्यकता नहीं रहती और खेत को खुला ही छोड़ देते हैं। गर्मी की जुताई से कई लाभ हैं। एक तो गर्मी की जुताई से रबी के पौधों की जड़ तथा खरपतवार उखड़ जाते हैं तथा बरसात में वर्षा होने पर शीघ्र ही सड़कर खाद में बदल जाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। खरीफ ऋतु में वर्षा होने पर खरपतवार कम उगते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण करने में मुश्किलें कम आती हैं। गर्मी की जुताई से कीड़ों मकोड़ों का नियंत्रण भी होता है। प्रायः कीड़े सुषुप्तावस्था में रहते हैं। गर्मी की जुताई से ये ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं, जो या तो तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं या चिड़िया आदि उन्हें खा जाती हैं। गर्मी की जुताई से अनेक रोगों को फैलाने वाले बीजाणु, जो कि खरपतवारों पर जीवित रहते हैं, खरपतवारों के साथ ये भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की जुताई से तेज धूप में तपी मिट्टी तथा गहराई तक जुताई के कारण प्रथम वर्षा के पानी की काफ़ी मात्रा मिट्टी सोख लेती है तथा गहराई तक नमी सुरक्षित रहती है। मिट्टी में वायु संचार होता है तथा साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें गर्मी की जुताई का महत्व इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना।
1: सुमेर के रहम करे ना।
0: राम नाम ही इस जीवन का असली आधार है। इसे भुलाकर इंसान सांसारिक सुखों में कभी तृप्त नहीं हो सकता। प्रभु के सिमरन के बिना जीवन में सच्चा आनंद और शांति पाना असंभव है।

श्री कृष्ण की कृपा और श्री राधा का प्रेम ही संसार रूपी सागर से पार उतरने का एकमात्र साधन है।

हमें अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर हमें बहुत भाग्य से मिलता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे हरिओम शरण, शेखर सेन, लता मंगेशकर और कंकना बनर्जी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु, विषय है विवेक।
1: दीनबंधु एंड्रयूज एक दिन प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। भीषण शीत पड़ रही थी। स्टेशन मास्टर के कमरे में अंगीठी जल रही थी। एक बूढ़ी औरत आग तपने के लालच में स्टेशन मास्टर के कमरे में चली आई। स्टेशन मास्टर ने डांट कर उसे भगाना चाहा। दीनबंधु एंड्रयूज के विवेक को यह सहन नहीं हो सका। उन्होंने तुरंत अपने कंधे पर रखी हुई गर्म शाल को उतारकर बुढ़िया को दे दिया। विवेक बुद्धि की पूर्णता है। जीवन के सभी कर्तव्यों में वह हमारा पथ प्रदर्शक है। संत कबीर कहते हैं, समझा समझा एक है, अन समझा सब एक, समझा सोई जानिए जाके हृदय विवेक। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम मेरा कहना इसलिए न मानो कि मैं कह रहा हूं। यदि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक किसी कार्य को करने की आज्ञा दे तो उसे तुम अवश्य करो। विवेक बुद्धि के सहयोग से जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। वह जीवन का नमक है तो कल्पना उसकी मिठास। एक उसको सुरक्षित रखता है तो दूसरा उसे मधुर बनाता है। विवेक का उपयोग करके ही विचारशील मनुष्य महत्वपूर्ण योजनाएं बनाते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और सफल महापुरुष कहलाते हैं। भाग्य निर्माण का आधार भी यही है। उत्कृष्ट विचारों और संकल्पों का महत्व समझने की कला जिन्हें आती है उन्हीं का जीवन सार्थक है। हरिऔध जी के अनुसार विवेकशील कीचड़ में पड़े रत्न को भी ग्रहण करते हैं, कीचड़ में लिप्त होने के कारण उसे छोड़ नहीं देते। शेक्सपियर का कथन है, अपने विवेक को अपना शिक्षक बनाओ।

0: शब्दों का कर्म और कर्मों का शब्द से मेल कराओ। विवेक और बुद्धि जीवन रूपी घड़ी की सुइयां हैं। सार्थक जीवन के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। बुद्धिवादी सम्राट अशोक ने प्रण किया था कि हर किसी को जीतकर अपने अहम तले समेट लेगा, परंतु तभी उसके विवेक ने उसे चेतावनी दी। जागृत संवेदनाओं ने अहंकार को कूड़े के ढेर में फेंक दिया और फिर जिस सम्राट अशोक का उदय हुआ वह था अशोक महान। वर्ड्सवर्थ ने शायद इसीलिए कहा है, उड़ने की अपेक्षा जब हम झुकते हैं तब विवेक के अधिक निकट होते हैं। जो सोच समझकर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है उसकी संगति से अत्यंत त्रस्त लोगों को भी शांति मिलती है। अतः हित की खोज किए बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो दीनों पर दया करने वाला, मन का कोमल, सत्यवादी और विवेकी होता है वह इस संसार में धन्य है। मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इसी प्रकार जिनका अंतःकरण मलिन या अपवित्र है उनके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इसलिए विवेकी बनना आवश्यक है। जब तक विवेक का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक यह मानव जीवन व्यर्थ है। यदि विवेक ही नहीं है तो धर्म या कर्म दोनों ही व्यर्थ हैं। राजहंस दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। उसी प्रकार साधारण व्यक्ति ईश्वर को नहीं देख सकते, परंतु विवेकी व्यक्ति परमात्मा के दर्शन पाकर दैवीय सुख का अनुभव करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, विषय था विवेक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनुराधा राय।
1: श्रोता बंधु, मैं डॉक्टर अनुराधा रॉय, प्रोफेसर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, आयुर्वेद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज आप सभी के सामने हूँ। एक बहुत ही विशेष और गंभीर बात पे चर्चा हम करेंगे, महिलाओं में होने वाली एक कंडीशन या बीमारी कह सकते हैं, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। तो चलिए पहले जानते हैं कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता क्या है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर जो है वो गर्भाशय के निचले हिस्से यानी जो योनि से जुड़ने वाला भाग है उसमें अगर किसी भी तरह का कैंसर बनता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कहा जाता है। ये आम तौर पर धीरे धीरे विकसित होता है और इसका सबसे मुख्य या बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसके कारण है वो हम कह सकते हैं HPV, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये एक वायरस है, इसका संक्रमण अगर लंबे समय तक किसी महिला में रहता है बिना उपचार के तो वो एक मुख्य कारण बन जाता है। चलिए देखते हैं इसके और क्या क्या कारण है। इसके कारण में सबसे पहले, जैसे हमने अभी बताया कि HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कई सारे प्रकार या रूप हैं जिसमें HPV 16 और HPV 18, ये दो मुख्य रूप से अगर लंबे समय तक संक्रमण रहे किसी महिला में तो वो एक मुख्य कारण बन सकता है। और साथ ही साथ अन्य कई सारे सह कारण हो सकते हैं, जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम इम्यूनिटी की कमी कह सकते हैं, धूम्रपान, जननांगों की कम स्वच्छता, कई यौन साथी।

0: थी, कम उम्र से ही यौन संबंध शुरू कर देना, गर्भनिरोधक गोलियों का लगातार बहुत लंबे समय तक उपयोग करना, यौन संचारित संक्रमणों का सहवर्ती होना, ये सारे मुख्य कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जोखिम कारण भी होते हैं, जैसे गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले संक्रमण, जिसमें जैसे हमने बताया HPV 16 और 18 का लंबे समय तक रहना, फिर साथ ही साथ कम उम्र में ही पहला यौन संबंध करना, कई सारे यौन साथी का होना, तंबाकू धूम्रपान का उपयोग करना, और साथ ही साथ जो है कम सामाजिक आर्थिक स्थिति का होना, नियमित जांच ना कराना, एकाधिक से ज़्यादा कई बच्चों का कम समय में ही हो जाना, साथ ही किसी परिवार में अगर कई महिलाएं इसी कंडीशन से गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पीड़ित है तो भी उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, और साथ ही साथ पोषण संबंधी कमियां भी हो सकती। फिर देखते हैं कि इसमें लक्षण क्या हमें मिलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में लक्षण दिखाई तो देते नहीं हैं या नहीं होते हैं, जैसे जैसे रोग बढ़ता है लक्षण शामिल होते जाते हैं। तो मुख्य लक्षणों में जैसे असामान्य योनि से रक्तस्राव का होना, मासिक धर्म के बीच में रक्तस्राव का होना, यौन संबंध के बाद रक्तस्राव का होना, रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव का दिखना, दुर्गंध युक्त अगर योनि स्राव किसी को हो रहा है जिसमें बहुत बदबू या दुर्गंध युक्त योनि स्राव है तो ये एक लक्षण बन सकता है, या आम तौर पे जो है ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। श्रोणि में दर्द का होना, यौन संबंध के दौरान भीषण दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेशाब या मल त्याग करने में कठिनाई का होना जो लंबे समय से हो, वजन कम हो जाना या बहुत ज़्यादा कमजोरी का लगना जिसका अन्य कोई कारण ना हो, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो किसी भी महिलाओं में जिनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है तो ये हो सकते हैं सारे लक्षण।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ थीं डॉक्टर अनुराधा रॉय। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।
2: एपिसोड 100 100।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूच रहा है, सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं।

परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत परगांवकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे मोहित साहनी का गायन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा गजल, कलाकार होंगी बेगम अख्तर। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर आप सुनेंगे नेहा चटर्जी के गाए भजन। सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी गीतांजलि मौर्या। इनके गाए लोकगीतों का आनंद आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना सान्याल से सतीश कुमार यादव की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा बीज प्रौद्योगिकी का महत्व।

नापसंदीदा कार्यक्रम यू वाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और यूथ जंक्शन के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया, जिसमें चर्चा के साथ ही होगी डॉक्टर माधवी तिवारी की वार्ता, सशक्त नारी उन्नत समाज। कार्यक्रम गीतांजलि सुनिएगा दिन 2:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे झंकार में, शाम 6:10 पर, शाम 7:45 पर रसरंग में और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम मधुरिमा और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

गैर फिल्मी गीत एवं गजल पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30 पर। स्वरबेला के अंतर्गत दीपक कुमार शर्मा का काव्य पाठ आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। युवा साथी

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

जी हाँ, आपके बनारसी बाबू के साथ। तो आइए करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। आप सभी को बनारसी बाबू का नमस्कार।

बनारस आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज ही के दिन 30 मई 1826 को हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। इसी से आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में संवाद और सूचना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल से ही ज्ञान का प्रसार श्रुति और स्मृति के माध्यम से होता रहा है। इस परंपरा में यदि किसी एक व्यक्ति को संवाद और सूचना प्रसारण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाए तो वे हैं देवर्षि नारद। उन्हें सिर्फ एक ऋषि या देवदूत के रूप में देखना उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। महर्षि वेदव्यास को विश्व का पहला संपादक और देवर्षि नारद को पृथ्वी लोक का सबसे पुराना संवाददाता, पत्रकार या मीडिया पर्सन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे संचार के ऐसे आचार्य हैं जो समय समय पर राजाओं को नीति और धर्म का उपदेश देते हैं और ये भूमिका आधुनिक समय के संपादकीय लेखक के समान प्रतीत होती है। बनारस संस्कृत साहित्य में नारद जी के लिए आचार्य पिशुनः शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह शब्द सूचना देने वाले विद्वान के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ बस एक संदेशवाहक नहीं बल्कि विवेकपूर्ण सूचना का संप्रेषक है। आधुनिक पत्रकारिता में यह भूमिका खोजी पत्रकार और विश्लेषक दोनों की होती है। नारद जी केवल समाचार देते ही नहीं थे बल्कि उसके पीछे का संदर्भ और परिणाम भी समझाते थे। यही कारण है कि उनका संवाद केवल सूचना नहीं बल्कि मार्गदर्शन

0: भी होता था। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी और सनत कुमारों का संवाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि भगवो वाचि नाम वै वागे वै तत् सर्वम्, यानी कि वाणी ही सब कुछ है। प्रश्न पूछना और सच तक पहुंचना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है और नारद जी इस परंपरा के प्रवर्तक के रूप में दिखाई देते हैं। समुद्र मंथन के समय विष निकलने की सूचना देना हो, सती के आत्मदाह की जानकारी शिवजी तक पहुंचानी हो या महाभारत युद्ध की स्थिति से अवगत कराना हो, ये सभी घटनाएं उनके सक्रिय संचारक होने का प्रमाण है। महाभारत का प्रसिद्ध सूक्त है, यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। नारद जी के जीवन में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे सदैव धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। आधुनिक पत्रकारिता में भी सत्य और नैतिकता का यही महत्व है। यदि हम आधुनिक पत्रकारिता के सिद्धांतों को देखें तो नारद जी के कार्यों में बहुत सारी समानताएं मिलती हैं। वे निरंतर यात्रा करते थे, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते थे और उसे संबंधित पक्षों तक पहुँचाते थे। वे संवाद के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। आज पीत पत्रकारिता के दौर में जब सूचनाएं तेजी से फैल रही हैं और भ्रम की संभावना भी अधिक है, तब नारद जी के आदर्श और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इस वक्त अपने महत्वपूर्ण विचारों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जन संप्रेषण विभाग के सह आचार्य डॉक्टर बाला लखेंद्र। तो आइए उन्हें सुन लेते हैं।
1: हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हम आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ होता है 30 मई 1826 को कोलकाता से, जब कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मारतंड का प्रकाशन आरंभ किया था और यही कारण है कि 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता के दिवस रूप में मनाते हैं। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ उस समय हुआ जब पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में लगा हुआ था और हम चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं उसकी सूचना लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और ये जरूरी था कि उनकी भाषा में उनके लिए एक ऐसा माध्यम तैयार किया जाए जो उन तक सही सूचना पहुंचाए, और यही काम हिंदी पत्रकारिता का उदंत मारतंड ने किया और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हिंदी पत्रकारिता केवल समाचार का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की सांस्कृतिक चेतना को लोगों को जागृत करने हेतु एक बड़ा कार्य था। जहां एक ओर स्वतंत्रता संघर्ष में इसकी भूमिका रही, वहीं दूसरी ओर जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उस समय की जो बुराइयां थी, जो छुआछूत था, इन सबों के खिलाफ भी उस समय हिंदी पत्रकारिता ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर हम बात करें हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष को, तो हम कई भागों में 1826 से 1870 को एक युग मानते हैं, जिस समय उदंत मारतंड के प्रकाशन के बाद बंगदूत, प्रजामित्र और बनारस अखबार जैसे समाचार पत्र ने समाज को नई पहचान दी, नई दिशा प्रदान किया। 1873 से 1900 तक को हम भारतेंदु युग के रूप में जानते हैं, जिस समय कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, ये बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित किया था, और उसी समय सरस्वती, प्रताप, कर्मवीर, आज जो वाराणसी से प्रकाशित होता रहा, विशाल भारत जैसे समाचार पत्रों ने दुनिया भर के देशों में भारत के मान को बढ़ाया। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त और बाबूराव विष्णु परारकर को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज हम भारतीय हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं। 1900 से 1947 तक का जो दौर रहा है, उस समय हम देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक, महावीर प्रसाद दुए जी जैसे अनेक पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की। तो आज जब हम पूरे भारतवर्ष में हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महान पत्रकारों को, उन महान जो हमारे संपादक रहे हैं जिन्होंने हिंदी का संवर्धन किया, हिंदी के विकास में अपनी भूमिका निभाई, हम उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें बार बार नमन करते हैं और यह आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदी पत्रकारिता और समृद्ध होगी और भारतीय समाज का विकास का वो एक प्रतिबिंब बनेगा और हम भारत देश को एक सशक्त राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र बनाने में सफल

0: हो पाएंगे। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी भाषा के संवर्धन में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने आरंभ काल से ही आकाशवाणी ने भारतीय भाषाओं के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है, खासतौर से हिंदी के संवर्धन में, हिंदी के विकास में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आकाशवाणी परिवार को भी इस हेतु बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और जन संप्रेषण विभाग के सह आचार्य डॉक्टर बाला लखेंद्र को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और अब बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस मौसम विज्ञानियों का अनुमान सच साबित हुआ। शुक्रवार अल सुबह गहरी नींद में रहे लोगों को बादलों की गर्जना ने चौंका दिया। आसमानी बिजली की चमक के साथ बारिश और उसे रफ्तार देती तूफानी हवा। लोगों की उन्नीति आंखें जब तक चैतन्य होती तब तक टिन शेड उड़ने, पेड़ों के गिरने का क्रम शुरू हो गया। हालांकि जिले में कहीं से जनहानि की सूचना नहीं मिली, लेकिन नुकसान काफी बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान आम की फसल को हुआ है। और बनारस एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देती है। आशापुर फ्लाईओवर की दाहिनी तरफ रैंप पर लीकेज की मरम्मत के लिए 30 मई की रात 11 बजे से यानी आज से 1 जून की सुबह 5 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने ये जानकारी दी। और साथ ही एक चीज और कि जून के अंतिम हफ्ते से दाल मंडी में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन की माने तो अब तक करीब 65% भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। जून के मध्य तक बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। बीएचयू और उत्तर प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग के बीच रामनगर के बाल संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को हस्ताक्षर हुए। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी की उपस्थिति में बीएचयू की ओर से कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और बनारस अब इसी के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और जिसका नाम है काशी कथा। जी हाँ, काशी कथा। बनारस जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस, इसलिए काशी कथा में आज आप सुनेंगे अपने शहर बनारस से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कथा। हालांकि बहुत सारी बातें डॉक्टर बाला लखेंद्र आपको बता चुके हैं, उसी कड़ी में ये भी हमारा एक प्रयास है। बनारस हिंदी प्रदेशों में सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन अपने शहर बनारस में हुआ। काशी से जो पहला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ उसका नाम था बनारस। सन 1845 की जनवरी में राजा शिव प्रसाद की सहायता से इस अखबार का जन्म हुआ और इसके संपादक गोविंद रघुनाथ थत्ते थे। इसके बाद 1850 में काशी से ही दूसरी पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था सुधाकर। सन 1867 में हिंदी पत्रकारिता की एक नई सुबह होती है और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का आरंभ होता है। उसके बाद 1873 की 15 अक्टूबर को हरिश्चंद्र मैगजीन का पहला अंक प्रकाशित होता है। इस पत्रिका के 8 अंक निकलने के बाद जून 1874 से इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। 1880 में यह पत्रिका भारतेंदु बाबू ने अपने मित्र मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को दे दी। जनवरी 1874 में नई पत्रिका बाल बोधिनी का प्रकाशन हुआ और उसके बाद वर्ष 1875 में काशी पत्रिका यहां से प्रकाशित हुई थी। बाबू बालेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे। सन 1897 में नागरी प्रचार

अरणी सभा द्वारा नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। उस समय यह हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका थी। बाबू श्याम सुंदर दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास इसके संपादक थे। 1907 ईस्वी में यह मासिक पत्रिका में परिवर्तित कर दी गई। नागरी प्रचारणी पत्रिका आज भी हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है, जिसका प्रकाशन निरंतर जारी है। सन 1900 में मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू हुआ। इसके प्रारंभिक संपादक मंडल में बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और पंडित किशोरी लाल गोस्वामी जैसे विद्वान शामिल थे। इसके बाद 1909 में हिंदू नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। मार्च 1930 में काशी से हंस का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। 11 फरवरी 1932 को बाबू शिव पूजन सहाय के संपादन में जागरण के पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था और इसके बाद 1938 में बाबू राव विष्णु पराड़कर के संपादन में कमला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। यदि दैनिक अखबारों की बात करें तो 3 मार्च 1884 को काशी से भारत जीवन नामक दैनिक का प्रकाशन शुरू हुआ। बाबू रामकृष्ण वर्मा इसके संपादक थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा ज्ञान मंडल की स्थापना हुई और 5 सितंबर 1920 से दैनिक आज का प्रकाशन आरंभ हुआ। स्वतंत्रता के बाद आज ने नए भारत के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 जनवरी 1943 को बाबू राव विष्णु पराड़कर के प्रधान संपादन में संसार का प्रकाशन काशीपुर से होने लगा। वर्ष 1946 में पंडित गंगा शंकर मिश्र के संपादन में दैनिक सन्मार्ग का प्रकाशन शुरू हुआ और इसके बाद 18 अक्टूबर 1950 को बनारस नामक दैनिक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक और प्रकाशक राजकुमार थे। वर्ष 1950 में ही काशी से गांडीव का प्रकाशन आरंभ हुआ। डॉक्टर भगवान दास अरोड़ा इसके संपादक और प्रकाशक थे। इससे पहले वर्ष 1937-38 में हास्य रस के प्रख्यात कवि पंडित कांतानाथ पांडे चोंच के संपादन में अलबेला नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। कृष्णदेव प्रसाद गोंड बेढप बनारसी ने 1938 में हास्य रस की पत्रिका खुदा की राह पर निकाली। जब 1942 के समाचार पत्रों के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई तो काशी से रणभेरी का प्रकाशन किया गया। बाबू अन्नपूर्णानंद और कृष्णदेव प्रसाद गोंड बेढप बनारसी ने 1924 में भूत नामक हास्य रस की पत्रिका निकाली थी और इसी वर्ष उग्रजी और बेढप बनारसी ने दूसरी हास्य पत्रिका भांड निकाली। बेढप जी ने 1936 में तरंग का प्रकाशन किया। वर्ष 1952-53 में गोविंद प्रसाद केजरीवाल के संपादन में सचित्र हास्य रस की पत्रिका करेला का प्रकाशन आरंभ हुआ। बलदेव प्रसाद मिश्र ने अजगर नाम से हास्य रस की पत्रिका निकाली। मुन्नू प्रसाद पांडे ने फिल्मी पत्रिका रंभा, डॉक्टर कमल गुप्त ने कहानीकार, वशिष्ठ अनूप ने शब्दार्थ और रोशन लाल रोशन ने समय संकेत निकाली। वर्ष 2006 में संस्कृत शोध पत्रिका वाक वाक्यम और 2007 में नव गवेषणा का संपादन डॉक्टर विवेक पांडे ने किया। 2013 से 2021 तक धर्मेंद्र गुप्त साहिल के संपादन में समकालीन स्पंदन का प्रकाशन हुआ। वर्तमान की बात करें तो वर्ष 2010 से डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र के प्रधान संपादन में साहित्यिक मासिक पत्रिका सोच विचार, 2009 से डॉक्टर उदयन मिश्र चिकितुषी, डॉक्टर शशिकला पांडेय नांदी, डॉक्टर रामसुधार सिंह जनपक्ष, मधुकर मिश्र कवितांबरा और सदानंद शाही द्वारा साखी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। तो बनारस से ये था काशी कथा का आज का अंक। काशी कथा। और अब बनारस के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि चलने का वक्त हो रहा है, तो दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
3: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है।
4: इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
2: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों के विकास से ही साकार होगा।

0: भी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव विकसित होंगे।
1: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार, परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
1: इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने

0: बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनजीवन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1,000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। कलाकार हैं मोहित साहनी, राग है राम कली। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं विशाल कुमार गुप्ता।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे मोहित साहनी, राग था रामकली। आपके साथ तबले पर संगति थी विशाल कुमार गुप्ता की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को work out करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
3: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
4: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
3: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत

0: एथेरोस्क्लेरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है।

0: है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की

0: 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फ्राहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: म्यांमार के सदर मिन होंग ह्यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बौद्ध गया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ्द भी होगा जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तजारती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रंजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सहपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायद अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह ये भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। گوا کی یوم تاسیس تقریبا

0: मुलाकात के दौरान नायब सदस्य सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीमशान इम्तजाज है, जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज़्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज़ फोर्स BSF को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में BSF एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम दो नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि BSF के क्याम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के BSF के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के क्याम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रर 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शासुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के

मधुरिमा सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव का नमस्कार। मधुरिमा में सदाबहार नगमों के साथ आज बात होगी उस एहसास की जो दुनिया को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, आज बात होगी इश्क की, प्यार की, जो दो दिलों को जोड़कर एक कर देता है।

दोस्तों, प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। ये जिंदगी का दिया सबसे अनमोल उपहार है, जो हमारी जिंदगी को रोशनी से भर देता है और हमें हमी से मिलाता है।

0: मधुरिमा में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम मधुरिमा में, और आज बातें हो रही हैं प्यार के बारे में। दोस्तों, प्यार में एक दूसरे के प्रति एक आस होती है, एक विश्वास होता है। जहां सौंदर्य में आसक्ति सिर्फ आकर्षण है, वहीं सच्चा प्यार हमारी रूह को पहचानता है। इसमें पूर्ण समर्पण होता है, ना ही इसमें कोई शर्तें होती हैं और ना ही कोई सौदेबाजी।

मोह और आकर्षण से परे निस्वार्थ प्यार हमारे जीवन को संपूर्ण करता है। ये हमारे जीने की वजह बन जाता है। ये कभी मीठी सी मुस्कान है तो कभी आंखों की नमी। जब हम प्यार में होते हैं तो दिल बस हर वक्त उनकी मौजूदगी चाहता है, उनका साथ और उनकी खामोशी। और उस खामोशी में आंखें वो सब कह जाती हैं जो दिल कहना चाहता है।

मधुरिमा का ये सफर आज यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और दिन कुछ नई बातों और एहसासों के साथ। तो मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मधुरिमा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीरनगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
1: संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्गों के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता कटवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीरनगर जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खैलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए एक काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खैलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी में चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 कुंतल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार सिन्हा को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलो अप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रखरखाव आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार

0: में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नव निर्मित बेकरी का फीता काट कर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल अकेडमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि इस नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गईं। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था

0: बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना शक्तिनगर पुलिस उपाधीक्षक पिपरी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सत्यप्रकाश सोनी पुत्र स्वर्गीय जगवल ग्राम खड़िया थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र के निवासी हैं। सत्यप्रकाश की उम्र 77 वर्ष, लंबाई औसत, रंग गेहुआ एवं चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 5 जनवरी 2026 सुबह 9 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने सफ़ेद टी शर्ट, काली पैंट एवं जूता पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र को सूचित करें। थाना बड़ा गांव कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रिया पुत्री शिवलाल उर्फ रामलाल बालीपुर थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी की निवासी हैं। रिया की उम्र 16 वर्ष, लंबाई 152 सेंटीमीटर, रंग सांवला एवं चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने फिरोजी टी शर्ट एवं सफ़ेद पैंट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी को सूचित करें। थाना लोहता सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार रोशनी बानो पुत्री अब्दुल कला ग्राम धन्नीपुर पोस्ट लोहता थाना लोहता जनपद वाराणसी की निवासी हैं। रोशनी बानो की उम्र 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 2 मार्च 2026 शाम 7 बजे से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने बुर्का और हिजाब पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना लोहता जनपद वाराणसी को सूचित करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
3: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग कारण लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल।

0: पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: कि एक इंसानी हम आहंगी या समाजी बेदारी या इंसानी कैफियत का नाम है। इंसान के जो फीलिंग्स हैं, जो इंसान के एहसासात हैं, उनको वो किस तरह से पेश करता है, ये अफसाने में हमें देखने को मिलता है। इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत अगर हम कहें तो तरक्की पसंद तहरीक से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1936 के बाद जदीद अफसाने का एक रुझान हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाज़ाब्ता नहीं मिलता। बाज़ाब्ता हमें ये रुझान 1950 के बाद देखने को मिलता है। 1936 के बाद प्रेमचंद के यहाँ अफसाने के बहुत ही अहम पहलुओं पर या और दीगर अफसाना निगारों के यहाँ ये पहलुओं पर गुफ्तगू देखने को मिलती है, तो लेकिन इनका बाज़ाब्ता तौर से जो हम बुनियाद कहेंगे या अफसाने का एक बदलता पहलू कहेंगे, बदलता जाविया कहेंगे, वो हमें तकरीबन 1950 के बाद देखने को मिलता है। इसमें बहुत से अफसाना जो कि कहा जाए कि मुख्तसर कहानी, किस्सा या छोटी बात, हम अफसाना कहते हैं
1: जी। तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी से मुराद ये है कि ऐसा अफसाना जिसके अंदर जदीद दौर के मसाइल, इंसानी नफसियात और समाजी तब्दीलियों को पेश किया जाए, मगर वो मुख्तसर ज़रूर हों। बहुत अच्छा आपने कहा, और इसकी खसूसियत पर भी आपने इशारा करते हुए कहा कि यह हकीकत निगारी, अलामत निगारी और फिक्री गहराई का पेश खेमा होता है। बहुत ही अच्छी बात आप कर रही हैं अफसाने के ताल्लुक से। तो यहाँ ये सवाल बनता है आपसे कि रिवायती और जदीद अफसाना में क्या नुमाया फ़र्क है, और इन नुमाया फ़र्कों में किन पहलुओं पर आप ज़्यादा नजर रखे हुए हैं की वजाहत हमारे सामने के सामने फरमाएं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, रिवायती अफसाना और जदीद अफसाना, ये दो पहलू हैं अफसाने के। और रिवायती अफसानों में बयान, इश्क, इस्लाह या माशरे के बदलते हुए पहलू या सादा समाजी मसाइल, सादा बयानी का जिक्र हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। जबकि जदीद अफसाने में मौजूआत या असलूब जो है, किरदार निगारी है, फिक्र के एतबार से फनी राहें अख्तियार कर लेती है या नए नए जाविये, नए नए रुझानात हम इसमें देखते हैं। एक बात ज्यादा तरीके से कह देते हैं जो हमारे क्या प्रेमचंद क्या देखने को मिला या इस तरह से बहुत से हमारे अफसानों निगारों क्या देखने को मिला, लेकिन उसी बात को हम इशारे किनायों में, तंज मिजाह में या समाज के उन पहलुओं पर जिन पे हम जानते हैं, समझते हैं कि इनमें तब्दीली आने की बहुत जरूरत है, उसमें हम अलामती अनासर पेश करते हैं। अलामती अनासर को पेश करते हुए हम जदीद अफसाना निगारी को बुनियाद रखते हैं।
1: बहुत अच्छा कहा आपने कि रिवायती अफसाना सादा किस्सा और इस्लाही अंदाज पर मबनी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जबकि जदीद अफसाना इंसानी बातिन, नफसियाती कैफियत और अलामती उसलूब पर ज्यादा तवज्जो देता है। बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पर आपने जदीदियत का जिक्र किया, तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि जदीद अफसाना निगारों ने शहरी जिंदगी के मसाइल और समाजी तब्दीलियों को किस तरह अपने अफसानों में जगह दी है, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: सच्चाई है कि शहरी जिंदगी इंसान का एक बहुत अहम रुख है और उसके बहुत ही पेचीदा मसाइल हैं। शहरी जिंदगी बड़ी उलझन भरी जिंदगी है। एक गांव से आया हुआ शख्स जो जिंदगी की कश्मकश में, अपनी रोजी रोजगार की तलाश में आकर के शहरी जिंदगी की उथल पुथल में कहीं गुम सा हो जाता है, उस जिंदगी की कश्मकश को एक अफसाना निगार बखूबी तरीके से बयान कर सकता है। वो जानता है कि क्या क्या अनासर उसमें हो सकते हैं, जिसमें बहुत से उनवानात पे एक अफसाना निगार बात करता है। शहरी दुनिया कैसी है, उसकी रंगारंगी कैसी है, मसरूफियात जिंदगी, तन्हाई, बेबसी, रोजगार की तलाश, रिश्तों की कमजोरी, अखलाकी जवाल, शहर में बढ़ती हुई हंगामा खेज हरकतें, गरीबी, ये तमाम मौजूआत शहरी जिंदगी के नशेब व फराज में बहुत ही मबनी है। जिलानी बानो ने इस पे अफसाना भी कहा है, कई अफसाने लिखे, एक हम हवाला देना चाहेंगे। ये शहर बिकाऊ है, ये एक उनका अफसांचा है जिसमें उन्होंने शहर के नशेब व फराज, यहाँ की बेरंगा रंगी जो दूर से देखने पे बहुत ज्यादा रंगों से भरा हुआ नजर आता है, अगर उस शहर में आप अंदर दाखिल हों और उसके अंधेरों को देखें तो इंसान कहीं ना कहीं गुम होकर के रह जाता है। इसमें सियासत, समाजी और उनके जो हालात हैं उन पे तंज व फिक्र का नजरिया जिलानी बालो ने अपने अफसाने में पेश किया है।
1: बहुत उम्दा आपने बताया कि जदीद अफसाना निगारों ने शहरी जिंदगी की मसरूफियत, तन्हाई, बेरोजगारी और बदलते हुए रिश्तों

0: को अपने अफसानों में नुमाया अंदाज में पेश किया है और खास तौर से आपने जिलानी साहिबा का तस्करा करते हुए उनके अफसाने को यहाँ पर मेंशन भी किया है। बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और करेंगे, जब आपने अभी जिलानी साहिबा का तस्करा किया है तो एक और सवाल यहाँ पर है कि जदीद अफसाना निगारी में औरत के किरदार और उसके मसाइल को किस अंदाज में पेश किया गया है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: बहुत अहम सवाल है। औरत का किरदार, औरत का किरदार हमेशा से मौजूए गुफ्तगू रहा, लेकिन उसके नज़रिए बदलते गए। हम देखते हैं अफसाना जब इब्तदाई दौर में था तब भी औरत का किरदार बड़ा बेबस, लाचार, मजबूर, दबा कुचला नज़र आता था, लेकिन जदीद अफसाने में काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नज़र आईं। इसमें औरत आज भी कितना भी तरक्की पसंद क्यों ना हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं एक खौफ, नफ्सियाती कैफियत, जहनी तन्हाई, समाजी पाबंदी, कश्मकश और दीगर समाजी मसाइल में गिरफ्तार नजर आती है। हकीकत यही है कि वो सिर्फ कहीं ना कहीं कैद होके रह गई है। वो चाहे कितनी भी आज़ाद हो जाए, समाना कितना भी बदल जाए, लोग उसे कितना भी कहने लगे कि हाँ अब औरत इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन आज भी उसको कहीं ना कहीं समाज में दबा कुचला ही समझा जाता है। जिलानी बानो ने, मैं फिर से एक रेफरेंस देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कई अफसानों में जैसे मोम की मरियम और एक अफसाना उनका है प्रॉमिस, जिसमें वो अपने बेटों से एक प्रॉमिस लेती हैं, एक वादा लेती हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि वो तन्हा रहती हैं, उनके शौहर नहीं रहते प्रॉमिस अफसाने में, और वो ये वादा लेती हैं कि तुम लोग बाहर रहते हो और जब कभी भी मुझे कुछ होता है तो तुम लोग मेरे पास आओगे और मेरे आखिरी रसूमात करोगे। लेकिन वो बेटे, उनकी तबीयत और अलालत, क्योंकि उनको कैंसर जैसी मुझे बीमारी हो जाती है और उस अलालत में वो ये सोचते हैं कि अब वालदा का आखिरी वक्त है और उनसे प्रॉमिस किया था और हमें जाना चाहिए, इस नुक्ते नजर को देखते हुए आ तो जाते हैं लेकिन उनके इंतकाल खुदा ना खास्ता होता नहीं है और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो इस दुनिया से कूच कर जाती हैं और वो प्रॉमिस टूट जाता है। तो बेटों की इतनी मसरूफियत कि वो अपनी माँ के आखिरी वक्त में भी उनके साथ ना रह सके। इस तरह से बहुत से अफसाने रहे और आप तो जानते हैं इसमत चुगताई ने बहुत से औरतों के ऊपर लिखे, टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का बहुत अच्छा नामी गिरामी अफसाना है, या कुरतुल ऐन हैदर ने लिखे, रजिया सज्जाद जहीर ने लिखे, इस तरह से मुशर्रफ आलम जौकी ने बड़े अहम अफसाने लिखे हैं, फ्रिज में औरत या बेटी, ये मुशर्रफ आलम जौकी के बहुत ही अहम तरीन अफसानों के नाम हैं।
0: बहुत अच्छा कहा कि जदीद अफसाना निगारी में औरत को एक बाशऊर खुद मुख्तार शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है और इसके समाजी घरेलू मसाइल को हकीकत का रूप देकर पेश किया गया है, बयान किया गया है, जिसमें बहुत से अफसाना निगार आपने जिनके नाम लिए काबिल जिक्र हैं। एक सवाल और यहाँ पर करेंगे, आपने शुरू में कौमी यकजहती का हवाला दिया था, कौमी यकजहती के ताल्लुक से करेंगे कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के अनासिर किस हद तक मौजूद हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: जी हाँ, जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती का रंग आपको जा बजा देखने को मिलता है और काफ़ी अफसाने लिखे गए, काफ़ी पहलुओं पे अफसाने लिखे गए और आज से नहीं, मेरे ख्याल से मंटो ने भी लिखे हैं इस पे और रजिया सज्जाद जहीर ने भी लिखे हैं। सभी को पता है कि टॉबर टेक्सिंग बहुत ही मशहूर अफसाना एक रहा मंटो का, और जिसमें उन्होंने एक ऐसा इंसान जो कि पागलपन के उरूज पर पहुंच चुका था और पाकिस्तान की जेल में था टॉबर टेक्सिंग, और क्योंकि वो नाम उसका टॉबर टेक्सिंग नहीं था लेकिन वो टॉबर टेक्सिंग जगह का रहने वाला था और उसको इतनी ज्यादा उनसियत उस जगह से थी कि वो पागल होने के बावजूद भी अपनी जमीन से इतनी बेपना मोहब्बत करता था कि वो हर पागलखाने में आने जाने वाले जो उससे मिलने आता था उससे यही पूछता था कि टॉबर टेक्सिंग कहाँ है, और उसका नाम जो था वो बिशन सिंह था लेकिन उसको लोग जानते टॉबर टेक्सिंग के नाम से ही थे। और आखिर में भी यही होता है कि जब लोगों को ये फैसला आता है कि हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान के हिंदू पागल हिंदुस्तान लाए जाएंगे, बंटवारे हो चुका होता है, उस वक्त टॉबर टेक्सिंग को जब लाया जाता है तो वो सरहद पे खड़े होकर सिर्फ यही बात कहता है कि टॉबर टेक्सिंग कहाँ है, और जब उसे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है तो वो जाने को हरगिज तैयार नहीं होता। उसे ये मतलब नहीं है कि वो किस जमीन पर है, सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने से बंटवारे नहीं होते, कौमी यकजहती का रंग वहीं पर वो खत्म हो जाता है और आधा हिस्सा उसका پاکستان اور آدھا ہندوستان میں رہ جاتا ہے. اسی طریقے کے بہت سے افسانے ہیں.
0: بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ جدید افسانہ نگاری میں قومی یکجہتی، بھائی چارہ اور سماجی

0: हम आहंगी के अनासिर नुमाया तौर पर मौजूद हैं और हमें मिलते हैं, जो मुआशरे को मुस्बत पैगाम देते हैं, और इससे अफसाना निगारी ने बहुत अहम तरक्की भी की है। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, आपने बहुत सारे अभी अफसाना निगारों के नाम लिए, तो अहदे हाजिर में जदीद अफसाना निगार कारी या सामे के लिए महज तफरी फराहम कर रहे हैं या गौर व फिक्र की भी दावत दे रहे हैं अपने अफसानों में, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जदीद अफसाना निगारों में आज भी बहुत अहम अफसाना निगारों के नाम आते हैं, जिनमें अभी कुछ दिन पहले गुजरे हुए अफसाना निगारों में रामलाल जी का नाम है, और इस तरह के अभी मौजूदा अफसाना निगारों में आयशा सिद्दीकी साहिबा हैं, या सबिया अनवर साहिबा हैं, और मोहसिन खान साहब हैं, और तमामों दीगर ऐसे अफसाना निगार हैं जो आज भी सिर्फ तफरी का सामान नहीं फराहम कर रहे हैं, वो उनके इस्लाह का काम बराबर चल रहा है और वो अपने अफसानों के जरिए उनके में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाह वो डिजिटली तौर से हो, ख्वाह वो किताबी शक्ल में हो, किसी भी तरीके से हो। अफसाने का मकसद ही यही होता है कि समाज को इस्लाह के दायरे से बाहर नहीं रखना है, इस्लाह दर इस्लाह करते जाना। तो अफसाना निगार जितने भी हैं, चाहे कोई भी हो, वो हर वक्त इस्लाह के लिए ही अफसाने, सिर्फ तफरी का कोई जरिया, क्योंकि तफरी के जरिए में उन पहलुओं को नहीं उजागर किया जाता है जो कहीं समाज में दब के रह गए हैं, जिन पे लोग कभी गौर नहीं करते, या लोग उन पे रोशनी डालने का कोई, अरे ये तो बहुत बोरिंग पहलू है, तो बोरिंग नहीं है, वो एक नजरिया है जिस नजरिए को उजागर करना है एक अफसाना निगार का बहुत अहम फरीजा है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जदीद अफसाना निगार सिर्फ तफरी फराहम नहीं करते, ये आपने बिल्कुल वाज़े किया, बल्कि कारी और सामे को जिंदगी और मुआशरे के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं। यहाँ अभी आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया और इसी तरह डिजिटल का भी तस्करा किया, एक सवाल इसका लेंगे कि मौजूदा डिजिटल दौर और सोशल मीडिया ने जदीद उर्दू अफसाना निगारी को किस तरह मुतासिर किया है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: जैसे भी हमने पहले भी कहा आपसे कि सोशल मीडिया क्योंकि लाइफस्टाइल को बहुत मुतासिर करता है, आज का दौर ही डिजिटल युग है, डिजिटल दौर में आज हम जिंदा हैं, हर काम हमारा इवन की फोन से लेकर के टेप रिकॉर्डर हो, डिजिटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत मुतासिर करता है अफसाने को, इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, इसमें अफसाने की इशात बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी फौरन इशात हो जाती, जबकि पहले बहुत वक्त लगता था अफसाने की इशात के लिए। सोशल मीडिया के दौर में इसकी बहुत ही आसानी हो गई, मुख्तसर अफसानों की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है, क्योंकि अब वक्त कम होता है लोगों के पास, तो मुख्तसर तरीके से वो सिर्फ स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे सोशल मीडिया पर और उन पे काम करते हैं।
0: जी तो बहुत अच्छा कहना है आप कि सोशल मीडिया और डिजिटल दौर ने जदीद अफसाना निगारी को ज्यादा फरोग दिया है और दे रहे हैं, क्योंकि अब अफसाने तेजी के साथ कारीन तक पहुंच जाते हैं, एक क्लिक में उनके सामने होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आज के प्रोग्राम के पेश नजर जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल आप कैसा देखती हैं, और आज हमारे सामीन को आप इस प्रोग्राम के तहत क्या पैगाम देना चाहेंगी, इसकी वजाहत फरमाएं।
1: देखिए जदीद अफसाना निगारी का जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन है, ऐसा नहीं है कि अफसाना निगारी का कहीं से जवाल आ रहा है, लिखने वालों की भी कमी नहीं है, बस गौर व फिक्र करने की बात है सामीन से। ये है कि जिस तरह से चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या अपने बुक्स के जरिए हो, वो काफी सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे रेखता है, उर्दू वेब पेज है, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है, या किताबें हो सकती हैं, उनसे अफसानों का मुताला करें, मुताले की आदत को मत छोड़ें, क्योंकि मुताले इंसान को आगे बढ़ाता है और आपका मुताले ही लिखने वालों का हौसला भी बढ़ाता।
0: बिल्कुल सही कहा आपके, जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल रोशन है, बहुत वाजे कर दिया आपने और पैगाम बहुत उम्दा दिया आपने कि नौजवान नस्ल मुताले से जुड़े, मुताले को फरोग दे, ताकि उर्दू अदब से वाबस्तगी उनकी बनी रहे और अफसाना निगारी इसी तरह तरक्की करता रहे। सामीन, आज की इस संजीदा और बामकसद बातचीत से ये हकीकत वाजे होकर सामने आती है कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी ने अदब को नए मौजूआत, नई टेक्निक और जदीद उसलूब से मालामाल किया है। इसने इंसानी जिंदगी के बातिनी पहलुओं और असरी मसाइल को बहुत ही संजीदगी के साथ پیش کر کے اردو ادب کو عالمی ادبی رجحانات کی ہم قدم بنا دیا ہے۔ جدید افسانہ آج بھی اردو ادب کی ایک زندہ، متحرک اور مؤثر سمت کے طور پر اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید اردو افسانہ نگاری نہ صرف اپنے عہد کی ترجمانی ہے بلکہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی فکری اور ادبی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ادب کے سنجیدہ

0: यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त, आदाब।
1: आप सुन रहे मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे लोक संगीत, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: लोक संगीत में आज की कलाकार हैं गीतांजलि मौर्या। पहले सुनिए इनके स्वर में निर्गुण

लोक संगीत में अभी आपने सुना गीतांजलि मौर्य के स्वर में निर्गुण। कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए इन्हीं के स्वर में खेमटा।

0: गीतांजलि मौर्या के गाए खेमटा के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: झंकार में पहले सुनिए घर फिल्म से ये गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

झंकार में अब सुनिए बेमिसाल फिल्म का ये गीत, आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

झंकार में अब अगला गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म खुशबू से। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आरडी वर्मन।

0: झंकार में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभिलाषा फिल्म का ये गाना। शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत था आर डी बर्मन का। झंकार में अगला गीत हमने लिया है फिल्म बहारों के सपने से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है आर डी बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का ये गाना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे सलिल चौधरी। झंकार में अगला गाना हमने लिया है आशा भोसले की आवाज़ में इजाज़त फिल्म से। संगीत है आर डी बर्मन का और शब्द रचना है गुलजार की।

0: झंकार में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को दिन में 11:30 बजे और महीने के आखिरी रविवार को दोपहर 2:30 पर। तो इस बार आरोग्यम में कार्यक्रम का विषय है न्यूरो और स्पाइन के रोग, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अवनीश राय। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी 28 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो श्रोताओं, हमें फोन करना न भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए कार्यक्रम आरोग्यम और आकाशवाणी वाराणसी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। किशोर कुमार की आवाज़ में अब सुनिए अभिमान फिल्म से ये गीत। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत है एस डी वर्मन का।

झंकार में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मेरे सनम का ये गाना। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीन देवियां से। आवाज है किशोर कुमार की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और धुन बनाई है एसडी वर्मन ने।

झंकार में अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में फिल्म सबसे बड़ा रुपया से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं सपन चक्रवर्ती।

झंकार का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जमीन आसमान से। आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना अनजान की और सुरों से सजाया है आरडी वर्मन ने।

फिल्म जमीन आसमान के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।

0: आकाशवाणी एट 90
1: मीडिया वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 11 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति है शैलेश दुबे की।

दोस्तों, अपने किरदार को आपके किरदार से जोड़कर प्यार भरे रिश्तों का एक मुकम्मल जहां बनाने और इस कार्यक्रम के सुनहरे सफर में सुनने आपके दिल की बात और पूरी करने आपकी फरमाइशों को गीतों के जरिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त शैलेश दुबे। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: दोस्तों टेलीफोन नंबर 0542221052 यानी 0542221052 पर कॉल करके आप भी जुड़ सकते हैं सीधे मेरे साथ कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। तो बस देर किस बात की, शुरू करते हैं आपसे बातचीत का सिलसिला और लेते हैं ये पहला कॉल। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश,
1: भोलानाथ पटेल, ग्राम पोस्ट बरौपुर, पश्चिम प्रतापगढ़।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में, और बताइए।
1: हम खेती किसानी काम करते हैं और बाकी थोड़ा कृषि यंत्र बनाते हैं, ये सब काम करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ये कृषि यंत्र से क्या तात्पर्य है, किस तरह के यंत्र बनाते हैं आप?
1: जैसे फरुआ, कुदार, हर हेंगा, ये सब बनाते हैं। हर हेंगा तो चल नहीं रहा है, चार पाई वगैरह, बेड, कुर्सी, मेज, सब ये सब अपना काम कर लेते हैं। सब एक ऑलराउंडर का, जैसे सिलाई नहीं जानते हैं, थोड़ा बाइक का काम नहीं जानते, और जो व्यक्ति होता है हम हर काम करते हैं।
0: और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ का जो मौसम है वो कैसा है आजकल?
1: मौसम तो गर्मी का मौसम है ही। परसों शाम की धूल भली आधी आई थी।
0: अच्छा,
1: थोड़ा गर्मी कम हुई थी और बाकी गर्मी बरकरार बनी है, वो प्रतिदिन तापमान बढ़ता ही रहेगा।
0: हाँ, इस समय तो नौतपा भी स्टार्ट हो गया है, तो इसका जो असर है वो बाकी लोगों पे भी काफी पड़ रहा है।
1: जी साहब,
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: तो सूर्य पिक्चर का बजा दीजिए।
0: सूर्य फिल्म का?
1: जी साहब।
0: सूर्य फिल्म का कौन सा गीत?
1: चाहे आए कोई आके मेरा दिल सामने।
0: चलिए, तो आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी साहब, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी बातचीत किससे हो रही है सर से?
0: मैं आपका दोस्त शैलेश दुबे बोल रहा हूँ।
1: महकता खनकता प्रोग्राम लेके मेरे प्यारे प्यारे शैलेश दुबे को प्यार भरा नमस्कार। हमने नंबर डायल किया है 222-1052 यानी 2205-2। बातें करेंगे आप अपने दोस्त शैलेश दुबे से। प्यार भरा नमस्कार सर।
0: आपको भी बहुत बहुत प्यार भी मेरी तरफ से और प्यार भरा नमस्कार भी आपको।
1: आप सर इतने अच्छे हैं कि हम कह नहीं सकते। आप इतने अच्छे हैं कि हम कह नहीं सकते, लेकिन मेरा फोन लग गया, हम बहुत अच्छे हो गए।
0: क्या बात है, क्या बात है। यही तो प्यार का सबसे खूबसूरत पहलू है कि जब एक और एक मिलते हैं तो एक ही होते हैं।
1: जी सर
0: तो
1: जी
0: मेरी ये बात किससे हो रही है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: अशोक जी, आपकी जो बात है वो इतनी निराली है और आपका जो अंदाज है वो भी बहुत निराला है। और ना केवल मुझे ये पसंद आता है आपका अंदाज, बल्कि जो भी हमारे अन्य श्रोता साथी हैं उनको भी आपका ये अंदाज बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ जो मौसम है उसका क्या समाचार है और क्या हालचाल है?
1: जो मौसम हमारे आकाशवाणी केंद्र में है
0: जी
1: वही मौसम हमारे लगे है। रह गया आकाशवाणी का मौसम कुछ और है, हमारा मौसम जो दुकान पर है कुछ और मौसम। हम पंखे की हवा ले रहे हैं, आपके आकाशवाणी में पूरी बगिया से एकदम सजा हुआ है, हरा भरा है। थोड़ी से हुआ कुछ वातावरण कुछ कम होगा, हमारे लगे ज्यादा है।
0: और सबसे अच्छी बात ये भी है ना कि जो आकाशवाणी की बगिया है, ना केवल वो आकाशवाणी के प्रांगण में खूबसूरत फूल की तरह सजा हुआ है, बल्कि जो आकाशवाणी के परिवार

0: और जो हमारे इस परिवार के बाकी सदस्य हैं आप जैसे श्रोताओं के रूप में, वो बगिया भी बहुत प्यारी है और बहुत खुशनुमा है।
1: जी धन्यवाद। बाकी आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी काम शिकन से बात कर रहे हैं, जैसे आपके अंदर घबराहट नहीं, न कोई काम रहे ऐसी काम रहे घबराहट से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सर घबराहट किस बात की? अगर अपनों के बीच में दिल में कोई धुक धुक या घबराहट हो तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे अपने हैं? आप बताएं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: हमारा तो एक गाना बहुत अच्छा लगा ला, हमारे घर गृहस्थी का गाना बा
0: जी,
1: जेठ महीनावा में।
0: चलिए तो अशोक जी आपने हमें फोन किया और इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सुनवाते हैं आपको आपकी ही पसंद का ये गीत नमन।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी सर, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था सर, कोलार रोड भोपाल से।

0: राम बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वहाँ पे क्या करते हैं।
1: अपने सर ये लॉन्ड्री का काम है, ड्राई क्लीनिंग का, लॉन्ड्री का शॉप है
0: जी।
1: और एक के माध्यम से आपके वाराणसी केंद्र के प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं। बहुत क्लासिक पूरे प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम हमको अच्छे लगते हैं सर। जैसे व्हाट्सएप फरमाइश हुए, ईमेल फरमाइश है
0: जी जी
1: और जितने भी व्हाट्सएप पे वो लोग गीत आते हैं ना, वो संडे के दिन
0: जी
1: एक
0: जी
1: के 30 मिनट से वो उस पे भी ऐसे में भेजते हैं। और आपकी आपसे मैंने बात करी थी कम से कम 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, मुझे बराबर याद है, एक बार बात
0: जी
1: हुई
0: जी
1: थी
0: जी
1: सर
0: जी
1: आपसे।
0: आपसे बात हुई है, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जो आप लोगों के बातचीत का तरीका होता है ना, वो हम लोगों को भूलने भी नहीं देता।
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल। और सर गर्मी तो बराबर अपने वाराणसी एरिया पूरे भारत में लगभग 42-44 पे पहुंच गई है,
0: बहुत
1: और
0: बहुत इस
1: वैसे
0: समय
1: थोड़ा
0: गर्मी
1: बहुत
0: बहुत
1: सबको,
0: ज्यादा है।
1: हाँ जी सर थोड़े दिन की बात है, वो तो गर्मी भी जरूरी है और वैसे बारिश शुरू हो जाएगी एक आध हफ्ते के बाद में, थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा, थोड़ा मौसम सही हो जाएगा सर।
0: जी, जब बारिश आ जाएगी तब थोड़ा सा मौसम खुशनुमा हो जाएगा। और
1: हाँ जी
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि हर मौसम बहुत जरूरी है, क्योंकि हर
1: जरूरी है
0: मौसम
1: सर।
0: से जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत यादें भी रहती हैं, और हर मौसम जरूरी भी इसलिए हो जाता है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगहों पे मौसम जो है वो बदलता रहता है। तो ये उस प्रदेश का, उस राज्य का, उस जगह का ये बहुत अहम हिस्सा हो जाता है मौसम को लेकर अगर
1: जी
0: हम लोग
1: जी
0: बातचीत करें।
1: जैसे गर्मी, आपने सही बात बोली है सर कि जैसे गर्मी इतना तेज होगी, इतनी बारिश अच्छे से होगी और बारिश सही से होगी तो अपने किसान भाई बीत जाएंगे, अच्छी फसल होगी
0: जी जी
1: और
0: जी
1: वैसे सर्दी भी वैसे बराबर अच्छे से होगी, ऐसा मौसम का संतुलन बना रहता है।
0: जी, ये मौसम जो है वो बिल्कुल जिंदगी की तरह है, क्योंकि अगर एक जैसा एक ढर्रे पे हम लोग चलें तो शायद वो आनंद हम नहीं ले पाते बदलते रूप का। तो इसी तरह से ये मौसम भी है। हाँ, थोड़ी सी बात ये हो जाती है कि जब गर्मी पड़ती है तो जिसके पास सुविधाएं हैं वो तो किसी न किसी बहाने से बच जाता है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, समाज का ऐसा तबका है जहां तक कि सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं इस मौसम में।
1: जी सर। और वैसे तो अगर बार बार आपके रेडियो के माध्यम से भी बोलते हैं और हर एक प्रोग्राम में बोलते हैं, आप जैसे आरजे भी बोलते हैं बार बार कि पेड़ लगाओ, बिल्कुल पेड़ को काटना नहीं चाहिए सर, पेड़ लगाना चाहिए और विशेषकर साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दो चीज का विशेष ध्यान रखोगे अपना भारत सबसे आगे होगा और
0: बिल्कुल
1: नंबर 1 पे होगा।
0: बिल्कुल होगा, और ये हम सबके एकल प्रयास से भी संभव हो सकता है। इसलिए हम ये भी अपने सभी साथियों से कहते हैं कि हमें सरकार के या प्रशासन के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपना व्यक्तिगत प्रयास भी जिम्मेदारी को लेते हुए पूरा करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: राम
1: और
0: बाबू
1: सबको
0: जी,
1: एकता के साथ में बिल्कुल एकता बना के चलना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए सर अच्छे बुरे
0: बिल्कुल
1: में समय पे।
0: जी। तो राम बाबू जी, किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको?
1: रंग मूवी का कोई सा भी सुनवा दीजिए।
0: अच्छा, चलिए। तो आपने हमें कॉल किया, हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम
1: जी
0: सुनवाते हैं
1: सर
0: आपको।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके हमको भी बहुत अच्छा लगा, आपका तरीका बिल्कुल अरुण सर की तरह आया था, अपनापन से बात करते हो सर आप भी बिल्कुल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपनापन तभी आ पाता है जब आप जैसे लोग हम लोगों से जुड़ते हैं और अपने दिल की बात एकदम अपने हो के हमसे बात करते हैं, तभी ये संभव भी हो पाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: चलिए, तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: जी। मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर।
0: सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और एक जो इंतजार रहती है आप जैसे श्रोताओं की ताकि हम लोग बातचीत करें वो पूरा हुआ आपके इस कॉल के साथ।
1: शुभ नाम सर बता दीजिए अपना।
0: मैं शैलेश दुबे बोल रहा हूँ
1: जी। आपसे तो हमसे बहुत बात हो चुकी है सर।
0: बस तड़प मेरी यही थी, मैंने अभी अभी यही कहा कि जो आप लोगों से बातचीत करने का इंतजार रहता है वो आपके इस कॉल के साथ अभी अभी खत्म हुआ है।
1: आकाशवाणी जो 90 वर्ष पूरे कर ली है उनको बहुत सादर जो है कि रेडियो जो बनाए हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ सर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। हम लोग बहुत ही जी जान से लगे हुए हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं।
0: जी जी सबसे अच्छी बात यही है कि ये जो 90 वर्ष पूरा हुआ है वो आप लोगों के साथ पूरा हुआ है, तो इसकी खुशी जो है वो आप लोगों के साथ, जो हम लोग सोच रखते हैं कि हर खुशी आप लोगों के साथ बांटी जाए ताकि इसकी जो आनंद की गति है वो भी बढ़ जाए और इसका जो दौर है वो भी बहुत लंबा हो।
1: और आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति बहुत ही बेमिसाल है सर, बहुत अच्छा लगता है सुनकर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वहाँ से अलाउंसर जो कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, चाहे हालोफोनी फरमाइश हुआ, ईमेल, व्हाट्सएप हुआ, कोई भी कार्यक्रम हुआ, जैसे बहुत अच्छा लगता है वाड़ी कार्यक्रम, कृषि जगत कार्यक्रम।
0: जी जी
1: बहुत ही नियमित हम लोग सुनते हैं ध्यान से सर।
0: नहीं अच्छी बात है ताकि हम लोग इन प्रतिक्रियाओं को सुन के ही एक साहस मिलता है और एक हौसला मिलता है कि हम लोगों का प्रयास सफल होता है।
1: जी आपका आकाशवाणी केंद्र और नजदीकी हमारा ये लोकल है आकाशवाणी पटना है ना
0: जी,
1: इसी दो चैनल से हम जुड़े रहते हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।

0: तो राम सकल जी, किस फिल्म का गीत सुनवा दें हम आपको?
1: सर, राम तेरी गंगा मैली फिल्म है ना, इसका वो गाना है ना, मुझको देखोगे जहाँ पे आसमां तक गाने के बोले, सर सुरेश वाडकर की आवाज में सर
0: अच्छा,
1: जी।
0: चलिए। तो राम सकल जी, आपने हमें कॉल किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, साथ ही साथ आपने 90 वर्ष पूरा होने पे जो अपना आभार जताया, प्यार जताया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से। तो हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, नमस्कार।
1: और सर एक बात और है,
0: जी
1: आपकी प्रस्तुति हालो फोनी परवाज की बहुत बेहद अच्छी लगती है सर। सर नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार, और आपके इस प्यार के लिए भी बहुत बहुत प्यार और आभार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं चंदूपुरा वाराणसी से राहुल कुमार बोला सर।
0: राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर।
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर।
0: बस तो ऐसे अच्छे रहिए, लेकिन ये जो मौसम है इस समय बहुत ज्यादा गर्मी वाला है, तो इस मौसम में अच्छा होना एक खुशी की बात है।

0: और इस गर्मी में लोगों को कहेंगे कि नींबू पानी पिए ज्यादा से ज्यादा,
1: जी
0: और विकोंडी का मतलब कि पीजिए
1: तो आप
0: गर्मी
1: इतने
0: से बचने के लिए।
1: जी, आप इतने अच्छे हैं, तो और कौन सी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप बताने चाहेंगे अपने अन्य साथियों को?
0: यही बताना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम सर बहुत अच्छा लगता है। हेलो फरमाई।
1: जी शुक्रिया।
0: बनारस बीच है और ये सब बहुत प्यारा लगता है सर।
1: चलिए, आप हमारे प्रोग्राम को इतने प्यार से सुनते हैं और सराहते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राहुल जी, एक चीज बताइए कि इस समय का जो मौसम है, तो आपने तो बता दिया कि इस मौसम में कैसे आप बच के रह सकते हैं, लेकिन आप एक बात और अपने साथियों से अपील जरूर करें, क्योंकि ना केवल हम लोगों को जिम्मेदारी के रूप में खुद को अच्छा रखना है, बल्कि हमारे अन्य भी जो समाज के हिस्सा के रूप में हम लोग उनको देख सकते हैं, जैसे जो वन्य प्राणी हैं। वन्य प्राणियों का मेरा तात्पर्य ये है कि जो हमारे आसपास के पशु हैं, ये जो पंछियां हैं, उनके लिए भी हमें एक प्रयास जरूर करना चाहिए कि अपने घर के आगे पानी जरूर रखें और अपने छतों पे पानी रखें, ताकि उनको बिना कहे वो पानी मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो मांग के भी पानी पी लेते हैं, लेकिन ये सब चीजें उनके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ना केवल हम आपसे कहेंगे और अन्य साथियों से कहेंगे, बल्कि हम ये चाहेंगे कि हमारी आवाज, हमारी बातचीत जहां भी पहुंच रही है, वो सब लोग व्यक्तिगत रूप से इस चीज को ध्यान रखें कि जैसे हमें प्यास लगती है, हमें धूप लगती है, तो उन लोगों के लिए भी जो हमसे बोल नहीं पाते लेकिन जरूरत उनकी भी है, तो हम एक प्रयास छोटा सा उनके लिए भी जरूर करें।
0: जी सर, मेरे घर पे मेरा छोटा भाई है, उसके दाना पानी रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है, गेहूँ रखा हुआ है, और घड़ी घड़ी में पानी रखा हुआ है,
1: बहुत
0: इसलिए कि जो पक्षी और आते हैं सर, गिलहरी उलहरी भी आते हैं
1: जी
0: सर, उस लोग के लिए भी पानी हम लोग दिया जाता है। और एक अपने दुआरी के पास जो गाय है, भैंस है और जर जानवर आता है सर, उसके लिए भी हम लोग के पास व्यवस्था है।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी पहल भी है, और अन्य लोग भी इस बात को थोड़ा सा अमल में लाएं, तो जैसे हम लोग परेशान होते हैं और हम लोगों को पानी मिलने पे राहत महसूस होता है, तो वैसे ही उनको भी अच्छा लगेगा कि हम उनके लिए सोच रहे हैं और उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी, किस फिल्म का गीत हम सुनवा दें आपको?
0: जी सर, मुझे गाना सुनना है, कबूतर जा जा कबूतर जा जा, यही गाना सुनना
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जाम बैठी कॉल चकड़िया जिला चंदौली से इमरती यादव।
0: इमरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी आप शैलेश जी बोल रहे हैं?
0: जी जी हम शैलेश जी बोल रहे हैं और बहुत इंतजार के बाद आपसे बात हो पाती है।
1: मैं ट्राई कर रही थी 10 मिनट से ट्राई कर रही थी, अब जाके मेरा कॉल लगा।
0: बस, तो आपके साथ साथ हमारा भी इंतजार खत्म हुआ आज, क्योंकि हमें भी इंतजार रहता है आपसे बात करने का। तो कैसी हैं आप और आपकी तरफ का मौसम कैसा है इस समय?
1: ठीक है, आप बताएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके?
0: बस हम भी अच्छे हैं और आकाशवाणी परिवार का हर सदस्य इस समय अच्छा है और कामना करता है कि जो भी हमारे श्रोता साथी हैं वो जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी जी
1: एक दूसरे का हमेशा लोग ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें
0: जी
1: और
0: जी
1: एक दूसरे के साथ प्रेम और संबंध बना के रखें।
0: बस
1: और
0: आज
1: जो है गर्मी थोड़ा सा तेज पड़ रही है, धूप भी तेज है, तो थोड़ा सा कहीं भी जाएं अपनी सावधानियों के साथ जाएं।
0: जी जी जी और ये आपका संदेश जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं उनको अमल में लाना भी है और साथ ही साथ उनको ये भी अमल में लाना है कि अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि कब किसकी कहाँ पे किस तरीके से तबीयत खराब हो जाए ये कोई नहीं जानता।
1: हाइड्रेट रहें और हमेशा कहीं भी जाएं तो थोड़ा सा सुविधा अपना ले, बॉटल हो छाता का प्रयोग करें तो उसका भी प्रयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और यही होता है कि जब हमारे दिल में खुद के साथ साथ अपने लोगों के लिए भी थोड़ी फिक्र होती है तो इस तरह की बातें हमारे दिल से निकल ही जाती हैं।
1: और बस घर में रहें और बेहद जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और साथ में बस आकाशवाणी रेडियो सुनते रहें, क्योंकि रेडियो तो एक ऐसा माध्यम है सर, हम लोग को मन को खुशी देता है रेडियो, जो एक हम लोग के जीवन से जुड़ा है सर।
0: जी जी जी और

0: रेडियो एक ऐसा जरिया है कि आप घर में रह के भी सुन सकते हैं, बाहर भी सुन सकते हैं।
1: साल 90 वर्ष पूरा हो रहा है आकाशवाणी का।
0: जी जी,
1: बहुत सारे श्रोताओं को और आप लोगों को सर बहुत सारी शुभकामनाएं। इतने लगन से आप लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए आपको दिल से और सभी श्रोताओं को और सभी उद्घोषकों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: और हम लोगों की तरफ से भी आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, क्योंकि जो हम लोगों का प्रयास रहता है आप लोगों के लिए, जब आप लोग सुनते हैं और सराहते हैं तो हम लोगों का प्रयास सफल होता नजर आता है और हम लोगों का जो हौसला है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो
1: बहुत सारे जीवन में सर बदलाव आए चले गए, लेकिन जो नहीं बदला वो है आकाशवाणी का माध्यम, जो रेडियो के जरिए हम लोग का जो मनोरंजन पहुंचता है और हम लोग सुनते हैं। और ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग लोग हैं जो नहीं देख सकते हैं, अपने जीवन में चाहे तो सर मतलब रास्ते पर मतलब बदलाव ला सकते हैं इसको मतलब सुन करके आकाशवाणी को।
0: जी जी जी, चलिए, तो आपने इतनी प्यारे प्यारे बातें भी कर ली। तो इमरती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: आज हमको सुनना है सर मुस्कान फिल्म का एक गीत है, अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम की आवाज है इसमें, और गीत के बोल हैं मैंने

0: वो हो तुम, यही वाला गीत सुनवाइए सर।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी प्यारी सी आवाज है वो हमारे अन्य साथियों तक भी जरूर पहुंची
0: हम
1: होगी।
0: हमेशा कॉल लगाते हैं और हमेशा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, अभी भी चल रहा है पीछे हमारे।
1: बिल्कुल, ये प्यार है और ये ना केवल मुस्कान फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएंगे, बल्कि हम ये भी चाहेंगे कि आपके जो चेहरे की मुस्कुराहट है और जो आपके दिल की खुशियां हैं वो यूं ही बरकरार रहें। तो इमरती जी,
0: सर
1: आप
0: आप लोग अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं और हम लोग का मनोरंजन होता रहता है, हम लोग हमेशा खुश रहते हैं सर। और रेडियो से कोई मतलब टेंशन होता है, कोई उदासीपन होता है, तो अकेले जो अकेलापन होता है वो रेडियो के माध्यम से निकल जाता है सर।
1: बिल्कुल, और ये अकेलापन आपके हिस्से में कभी ना आए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा साथी जो
0: सर
1: है वो
0: अभी
1: रेडियो है।
0: बताओ कि हम जुड़े हैं, हमारे निमित्त श्रोता है अशोक कुमार प्रजापति करौता लोता वाराणसी से, उनसे हम जुड़े हैं और
1: जी,
0: कम से कम सर 15-20 स्टेशनों में भाग ले चुके हैं हम।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ना केवल हम लोगों के केंद्र से जुड़ी हैं, बल्कि अन्य केंद्रों से भी जुड़ी हैं और अपना प्यार, अपना सुझाव और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देती रहती हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी सर, हमारे एक भतीजी है, उनका नाम है खुशी यादव
1: जी
0: जी, उनका हमारा बोल रहे थे कब से कि हमारा नाम ले लेना।
1: बिल्कुल, तो हम आपको और खुशी जी को आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने रेडियो सेट पर, नमस्कार।
0: ओके सर, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं जयप्रकाश भारती स्टेशन रोड बस्ती से बोल रहा हूँ।
0: जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे

0: आज के इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद सर।
0: तो बताएं आपकी तरफ का मौसम का क्या समाचार है?
1: आंधी तूफान आया हुआ था, इसलिए मौसम थोड़ा आज ठंडा ही है, हवाएं हैं।
0: अच्छा, आंधी तूफान आने के कारण जो है उधर का आपकी तरफ का जो मौसम है वो थोड़ा,
1: वरना तापमान 40-42 डिग्री के आसपास चल रहा था।
0: जी जी जी ये तापमान बढ़ जाने से जो जन सामान्य हैं, आम लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं इस समय। तो

0: बहुत परेशान है इस समय, तो जहाँ पे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और कहीं कहीं बारिश का भी समाचार है, कहीं पे आंधी का भी समाचार है, तो
1: हाँ
0: इससे थोड़ा
1: जी,
0: मौसम
1: और
0: ने थोड़ा
1: काफी
0: नरमी
1: नुकसान भी हुए
0: बरती।
1: हैं।
0: रेडियो के एक अच्छे श्रोता हैं, तो 90 वर्ष पूरा हुआ है अभी, तो किस रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे?
1: जी, रेडियो से किसी को कोई नुकसान नहीं है, रेडियो दोस्त है और लोगों को जोड़ता ही है, दिलों को तोड़ता नहीं है। अपना
0: जी
1: आदमी काम भी करता रहता है और रेडियो से एंजॉय भी करता रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रेडियो है वो तब जाके इसका प्रसारण पूरा होता है जब हम एक कार्यक्रम बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप उसे सुन के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हम तक पहुंचाते हैं, तब ये पूरा का पूरा प्रसारण मुकम्मल हो पाता है। तो आप रेडियो से कितने समय से जुड़े हैं?
1: जी, ये बचपन का शौक, मान चलिए 30 साल तो लगभग हो ही गए हैं।
0: यानी 30 साल से एक नियमित श्रोता के तौर पे आप रेडियो सुन रहे हैं।
1: जी,
0: आपने पहले ही बोल दिया कि रेडियो जो है वो दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब प्रयास करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि ना केवल हम एक मनोरंजन के रूप में आपको एक अच्छी अनुभूति कराएं, बल्कि जो ज्ञान है, जो एक जिम्मेदारी का बोध है या अधिकार बोध है या प्रेम की बात हम लोग कर लें, तो जिंदगी के जितने पहलू हो सकते हैं हर एक पहलू पे हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़ने का जो प्रयास है वो पूरा हो जाए हमारा। तो आपको किस फिल्म का गीत सुनवा दें?
1: जी फिल्म राहू के दो रंग का गीत है, किशोर कुमार का गाया हुआ, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार।
0: चलिए तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
0: हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का ये भाग आप सुन रहे थे अपने दोस्त शैलेश दुबे के साथ। इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। आप हमें फोन कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को सुबह 10:30 से। हमारा फोन नंबर है 0542-222-1052, यानी 0542-222-1052। दोस्तों ऐसे ही किसी प्यार भरे एक और खूबसूरत सफर में आप और हम होंगे फिर से साथ साथ। तो अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए अपने दोस्त शैलेश दुबे को इजाजत इस वादे के साथ कि आप जहां भी होंगे अपने चेहरे की मुस्कुराहट को यूं ही बरकरार रखेंगे, और अगर हो सके तो किसी और चेहरे की मुस्कुराहट का कारण भी जरूर बनेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, प्रस्तुति शैलेश दुबे की। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम कहकशां। काश हम कहकशां के तारे होते, टूटते हम और मुकम्मल ख्वाब सारे होते। इन लाइनों के साथ आगाज करते हैं कहकशां प्रोग्राम का, और मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर चित्रा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया है, गम को आंखों में छुपाना सीख लिया है। मेरे चेहरे से कोई बात हाजिर हो, दबा के होठों को हमने मुस्कुराना सीख लिया है।

वो कागज़ की कश्ती, ठंडी ठंडी हवाएं, कहाँ है बारिश? वो तेरी झरनों की बूंद कहाँ है? याद है हमें वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती।

भोली सी सजनी प्यारा सा साजन, द्वार खड़े एक नैन तक निहारे, कभी मुस्काए तो कभी शर्माए, देख प्रीतम का मुखर साए।

हर रोज़ तेरा इंतज़ार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। दीवाने ही तो हैं हम तेरे, जो हर वक्त तेरे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। तो आज का कहकशा का सफ़र बस इतना ही। इस प्रोग्राम को हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। दीजिए इजाज़त।

0: अभी आप सुन रहे थे कहकशा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं नेहा चैटर्जी। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये भजन। रचना है मलूक दास की।

मलूकदास की रचना के बाद आइए सुनवाते हैं ये गीत। रचना है जयशंकर प्रसाद की और आवाज़ है नेहा चैटर्जी की।

अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की रचना में ये गीत। इसी के साथ समाप्त होता है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थी नेहा चैटर्जी। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मोहित साहनी का शास्त्रीय गायन। राग है मधुबंती। आपके साथ तबला संगत की है विशाल कुमार मिश्रा, विशाल कुमार गुप्ता ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहित साहनी का गायन। राग था मधुवंती। आपके साथ तबला संगत की थी विशाल कुमार गुप्ता ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया

0: 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3 करोड़ 33 लाख से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी,
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। दिन के 1:05 हो रहे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में और आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। सहायक पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमा सिंह पुत्री राजवीर सिंह निवासी नाथूपुर पोस्ट पुल्लनपुर थाना मडुआडी जनपद वाराणसी। सीमा सिंह दिनांक 18 मार्च 2026 दिन 1 बजे नाथूपुर से लापता है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनका उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फिट, रंग सांवला। लापता होने के समय इन्होंने ग्रे कलर का सलवार और सूट पहन रखा था। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या सहायक पुलिस आयुक्त को 9454404393 पर सूचित करें। थाना बबरी जनपद सोनभद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंजू कुमारी पत्नी शिवमूर्त निवासी ग्राम सिमरिया थाना बबनी जनपद सोनभद्र। मंजू कुमारी दिनांक 25 मार्च 2026 दिन में 12 बजे से ये लापता हैं। मंजू कुमारी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है।

0: है 22 वर्ष। शरीर की बनावट सामान्य है, रंग सांवला, कद 5 फिट 2 इंच। इनके बाल काले हैं। लापता होने के समय इन्होंने पीले रंग की साड़ी, ब्लाउज और पैर में चप्पल पहन रखी थी। इनके बारे में यदि किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो निकटतम थाना अध्यक्ष या थाना बबडी जनपद सोनभद्र को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। अब आइए एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 10 बजे से। आज की प्रस्तुति होगी आकाशवाणी इंदौर की, जिसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन होगा रात्रि 9:30 से। सुगम संगीत के कार्यक्रम में बेगम अख्तर की गजलों का लुत्फ उठाइएगा रात 8 बजे से। स्वरबेला कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा दीपक कुमार शर्मा का काव्य पाठ। किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी बीज प्रौद्योगिकी का महत्व विषय पर डॉक्टर अर्चना सान्याल से सतीश कुमार यादव की बातचीत। साथ ही होगा गीतांजलि मौर्या का गाया लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। युवा साथी सुनेंगे युवाणी शाम 5:15 से। कार्यक्रम में आज की बात होगी। साथ ही फोन इन कार्यक्रम यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेगा शाम 5 बजे से। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी रोचक जानकारी और बाल गीत। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगनैया दिन 1:15 से। कार्यक्रम में चर्चा होगी और साथ ही सशक्त नारी उन्नत समाज, इस विषय पर डॉक्टर माधुरी तिवारी की सुनेगा वार्ता और साथ ही साथ होगा गीत संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रसमाधुरी रात 8:15 पर, रसरंग शाम 7:45 पर, फिल्म संगीत शाम 6:10 पर और गीतांजलि सुनेगा दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहां कायम रिटायर्ड जंगली पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
2: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहाँ पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे।
1: حکومت نے مغربی ایشیا تنازع کی وجہ سے عالمی توانائی فراہمی میں رکھنے کو دیکھتے ہوئے عوامی شعبے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 30 دن کا ایل پی جی ذخیرہ محفوظ کرنے کے احکام دیے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی مشترکہ سیکریٹری سجاتا شرما نے کل نئی دہلی میں یہ جانکاری دی۔ جوائنٹ سیکریٹری نے کہا کہ حکومت حکمت عملی ذخیروں کے توسط سے

0: अग्नि या कार्यक्रम सुनने वाली सब बहनी लोगन के नमस्ते, आ इमिरती बहन तोहरों के नमस्ते हो।
1: नमस्ते हो लाली, नमस्ते। और बतावा का हाल चाल हुए?
0: अरे हाल चाल तो बहुत ठीक है, और लेकिन घाम तो दो ऐसा कह देत हुआ ना कि मन कहा था कि खाना न खाएं लेकिन गट गट पानी पिए के मिल जाए घड़ी घड़ी।
1: अरे लाली, कहीं के साथ में जो गुड़ लेके चललू ना, तो ऊ तो बड़ा निक करेलू।

0: साथे में गट गट पानी के बात कैलू है, तो भाई सभी के ई चाही कि कुछो न ले लेकिन अपने साथ पानी जरूर रखें। काहे से कि पानी रखना इतनी भी जरूरी लगी ना कि देखा पानी से बहुत तरह का परेशानी भी हो जाला स्वास्थ्य संबंधी। तो ये बदे घरे से जब आप चलें तो भाई पानी अपने साथ जरूर रखें।
1: अब पानी रखे साथ ही यो ध्यान रखे कि है कि वो साफ रहे। ये बहनी पिए वाला पानी है ना, पिए वाला पानी अगर तनी गंदा रही ना तो उसे 70 तरह का बीमारी हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर पिए वाला पानी है तो ओके सफाई का पूरा ध्यान रखे के है कि वो हमेशा सुरक्षित और स्वच्छ रहे।
0: इतना नहीं लाली, हम कहें कि घरे में भी ना जो पानी हम लोग रखी ला ओकर जो बर्तन रहे ओके रोज कर वो साफ करे के चाहिए। साथ में ये ना है कि भाई पानी निकाले के बाद तो गगरी में हाथ डाल के जो ना कि डब्बे से बोर के निकाल के लेके चल देलू पानी पिया देलू सबके। एकर भी विशेष ध्यान रखे के चाहिए बहन लोगन के कि अगर आप गगरा रखत हैं या सुराही रखत हैं या बाल्टी रखत हैं तो ओके ढक के रखें और साथ में एक डंडीदार बर्तन जरूर रखें, जैसे कि आप पानी निकालें तो दूसरे के स्वच्छ पानी दें। और कैसे होला ना लाली कि जब हम लोग पानी निकाल लेते अपने हाथ जब में डूब जाला तो भाई देखा अपने नाखून में तरह तरह के गंदगी होला। यही से कल जला ना कि स्वच्छ पेयजल जो होला उस स्वास्थ्य के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा होला।
1: बिल्कुल सही बात कहलू है मीर्ति बहन। साथे अगर गंवा में कुइया से अगर लोगन बहनी लोगन पानी लेते हैं तो कुइया के ढकल रखे का व्यवस्था होए के चाहिए। संगे उमन समय समय पर जो दवाई होला जैसे पानी स्वच्छ रहे वो डलवावे के चाहिए भाई प्रधान जी से कह के।
0: भाई प्रधान जी के से कहा कि ये कुआं तो गांव के लोग करी हैं और दूसर बात कल हो ढक के कुआं के। अब तो देखा हो कुआं का जोन हो ना कि अब तो भाई कहीं कहीं कुआं दिखात हो। मन नहीं इतना स्वार्थी हो गल बा कि इतना पानी कहे कि लोगन जो ना धीरे धीरे जो ना स्रोता नीचे गर्मी में देखा पानी ले बदे लोग कितना दूर दूर तक जात हुए।
1: बिल्कुल
0: तो भाई पानी स्वच्छ रहे आपके मिले और साथ में पानी बनल रहे धरती के अंदर एकरे बदे भी हम लोग के प्रयास करे के हो।
1: बरखा बुनी का देखा समय आवे वाला है और आवे से पहले ही तैयारी करे के चाहिए कि हम लोगन बरखा बुनी के जो पानी है जल है वो धरती में ढेर का समय वो तरह का व्यवस्था कैल जाए।
0: बिल्कुल। देखा हम लोग तो बार बार यही बात जागरूक करी ला भैया बहन लोगन के कि भाई आप लोग जागरूक रही हैं, आप लोग थोड़ी थोड़ी सचेत रही हैं अपने प्रति अपने भविष्य के प्रति अपने पर्यावरण के प्रति। तो बहुत सारी ऐसी समस्या जो भविष्य में आने वाली है उसे हम लोग जो है ना निजात पा सकीला।
1: देखा जागरूकता सतर्कता का बात करत हो ना तो बहनी लोगन बदे सरकार की ओर से कितना योजना चलावल जाता है बारे में भी तो जागरूक कह था।
0: अरे देखा चलत हो ना मातृवंदन योजना और लाली जौन भी योजना चलल ना ओकर उद्देश्य यह रहला कि ज्यादा से ज्यादा लोगन के लाभ मिला। तो ई जौन योजना चलत हो ना ई गर्भवती महिला लोगन के स्तनपान करावे वाली महिला लोगन बदे विशेष योजना हो जेकरे माध्यम से कि लोगन के बेहतर पोषण और चिकित्सा देवल जा सके। और इमे आर्थिक सहायता का विशेष व्यवस्था कैल गई हो कि जे माँ के पास पहला बच्चा हो ओके 5,000 रुपया और माला दूसरा बच्चा जो बेटी हो था तो विशेष प्रोत्साहन दे बदे उमे 6,000 रुपया देवल जाता हो जो उनके सीधे उनके जो हो खाता में जाता हुआ।
1: अब भाई एक संग ही ना जाएला तनी तनी किस्त में जाएला लेकिन उसे उनके बड़ी राहत हो जाएला। साथे खाए पिए का भी भरपूर व्यवस्था है कि भाई पहले भी जब वो गर्भवती है तब वो अपन ध्यान रख सके और प्रसव के बाद वो अपन ध्यान रख सके बच्चा का भी ध्यान रख सके।
0: भाई ध्यान देवे करी है कैसे सरकार भी प्रयास करत हो तो हम लोग को भी प्रयास होए के चाहिए कि अपने पास जवन भी साधन हो उनमें आप पौष्टिक भोजन खाएं। भोजन खेले के बाद का हुई कि भाई आप अपन स्वयं स्वस्थ रही है और जो आंवला बच्चा है वो भी स्वस्थ रही।
1: बिल्कुल सही बात कहती मीर्ति बहन। भाई आपन नाक कपार खोल के रखी है जब सुनी है जागरूक रही है कि देश दुनिया में का होता तब भी कौन सुविधा का लाभ मिली उन लोगों
0: को। तो भाई कहीं कि ये बदले हम लोग भी घोरा घोरा के कहला कि जो सरकार की तरफ से योजना चला तो बहन लोगों का लाभ मिला और कहीं की जरूरी संदेश लाली सुन लेवल जाए और फिर बात कही कह जाए।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं

0: मतदानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
5: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: लाली।
7: हाँ हो।
6: कहाँ सोचा थी?
7: अरे सोचा थे ई कि भाई ई जोन संदेश होला ऐसे भी कितना जानकारी का चीज मिलेला, और एकरे पहले जोन हम लोगन महिला लोगन के जागरूक रहे का बात करत रहली ना, तो देखा अब हम लोगन के कहत सुनत बहुत बहनी लोगन जागरूक हो भी गई हैं। अब गाँव में देखल जाला ना तो केहू ऐसन पीछे नहीं हो।
6: ये भाई पीछे की बात कर लो तो हम लोग पीछे रहिला भी नहीं, चाहे घरे का काम हो, चाहे बहरे का काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे देश के कोनो काम हो, उनमें हर जगह बहन लोग अपन जो परचम लहरावत हैं।
7: बिल्कुल, और समाज के अगर आगे बढ़ावे के है, ऊंचाई की ओर ले जाए के है, तो नारी का सशक्त रहल बहुत जरूरी है। यही विषय पर तो आज हम लोगन का एक वार्ता भी तक।
6: हाँ तो सुनवा लो बहन जो की सशक्त नारी उन्नत समाज, वार्ताकार है डॉक्टर माधवी तिवारी। तो बहन लोग नीके का वार्ता सुने।
8: सभी बहनों को मेरा प्रणाम। नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। बहने भारतीय संस्कृति में नारी को सदा ही शक्ति, विद्या और सृजन का प्रतीक माना गया। भारतीय परंपरा का मूल यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा हमारी प्राचीन सभ्यता में गार्गी मैत्रेयी से लेकर रानी चैनम्मा, पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर और वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसी नारियों ने न केवल समाज को दिशा दी बल्कि अपने समय में नेतृत्व का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को हमेशा सम्मान और उच्च स्थान दिया गया है। वैदिक काल में वेदाध्ययन, राजनीति और धर्मशास्त्र में महिलाओं की भागीदारी देखी गई। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और माँ दुर्गा के रूप में नारी को विद्या, समृद्धि और शक्ति का स्वरूप माना गया है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आप तो जानती ही हैं कि आज की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं है बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यापार में भारतीय महिलाओं ने अपनी सशक्त पहचान बनाई, जैसे कल्पना चावला, पीटी उषा, पीवी सिंधु, किरण मजुमदार शाह, फाल्गुनी नायर, साइना नेहवाल, एमसी मैरीकॉम और नंदिनी हरिनाथ जैसी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को हासिल किया है। प्रदेश सरकार के द्वारा भी नारी को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़कर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही, इससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं नारी को सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी नारियों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इनसे समाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृत्व वंदना योजना जैसी योजना नारियों के जीवन को बेहतर बना रही है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही। भारतीय संस्कृति में सदैव नारी को सम्मान मिला है। नारी शक्ति का

अर्थ महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना है। जब महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। इसलिए महिलाओं के लिए सम्मानपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनाना समाज के उन्नत के लिए अत्यंत आवश्यक। अगर नारी सशक्त हो तो सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है और एक ऐसा वातावरण बनता है जहां महिलाएं बिना भय और भेदभाव के अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके। इसलिए नारी का सशक्त होना किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज के संतुलित और सतत विकास का आधार है। भारत जैसे विकासशील देश में नारी सशक्तिकरण को इसीलिए भी विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि महिलाओं की स्थिति सीधे परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को प्रभावित करती है। स्त्री को सृजन की शक्ति माना गया है। इस शक्ति को विकसित कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही सशक्त बनाना है। नारी को सशक्त बनाना आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता है। समाज की प्रगति और देश के विकास का आधार तभी मजबूत होता है जब महिलाओं को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। नारी केवल परिवार की धुरी नहीं है बल्कि शिक्षा, विज्ञान, कला, राजनीति और व्यवसाय में अपनी प्रतिभा से नई राहें बनाती। नारी शक्ति केवल शब्द नहीं बल्कि समाज की आधारशिला है। जब एक महिला सशक्त होती है तो न केवल परिवार बल्कि संपूर्ण समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। सरकार भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। हमारा भी मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और उनको समानता देना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, समाज परिवार में अपनी पूर्ण क्षमता से भागीदारी दिखा सके। महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, राजनीतिक व आर्थिक अवसरों, समानताओं और उनकी सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे। महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझकर उसका उपयोग कर सके। महिलाओं को विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा, करियर एवं व्यावसायिक परामर्श, प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमता आदि से जोड़ने, उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं कि जिनकी कुछ वर्ष पूर्व कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज की महिलाएं जागरूक हैं और अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रही। महिलाओं के विचारों और उनके जीवन मूल्यों से सुखी परिवार, आदर्श समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा। नारी समाज की आदर्श शिल्पकार है। भारतीय दर्शन का यह उल्लेख नारी शक्ति और निर्माण का आवाहन है। भारत में नारी सदैव अग्रणी रही है, प्रथम रही है। मातृशक्ति को आदि शक्ति माना गया है। हमारी परंपरा, चिंतन और संस्कृति में नारी का सम्मान रहा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे संसार ने महिला सशक्तिकरण को स्वीकार किया है। सरकार ने भी हमें विकास के साथ विरासत का सूत्र दिया है। भारत की वैचारिक विरासत नारी सम्मान की रही है। यदि सामाजिक वातावरण में मर्यादा होगी, नारी सम्मान होगा, तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे और नारी स्वयमेव
सुरक्षित हो जाएगी। इसीलिए भारतीय

0: संस्कृति में नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार सरकार ने आध्यात्मिक स्थलों की पवित्रता और नारी सम्मान के लिए अनेकों स्थानों को नशा मुक्त करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी, नैतिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी, घरेलू हिंसा में नियंत्रण के साथ महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। हमें तो लगता है बहने कि शराबबंदी से आध्यात्मिक स्थलों की पवित्रता के साथ महिलाओं के सम्मान को लेकर सकारात्मक बदलाव आएगा। भारतीय जीवन शैली में महिलाओं की भूमिका सदैव अग्रणी रही है। हम जितने अवसर अधिक से अधिक अपनी बहन बेटियों को देंगे, सुविधाएं देंगे, तो वे समाज को कई गुना लौटा कर देंगे। महिला शक्ति से देश नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। समय के साथ शिक्षा, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में उनकी भूमिका बढ़ रही। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की भूमिका न केवल परिवार और समाज के विकास में अग्रणी रहे, बल्कि विकसित भारत अभियान में भी उनकी सहभागिता हो। इसलिए मेरा मानना है कि नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आप सभी जानती हैं कि व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के केंद्र में नारी है। इसीलिए विकसित भारत निर्माण के लिए महिला स्वावलंबन और सम्मान की बात कही गई। विश्व में भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित करने का जो संकल्प है, वह तभी संभव है जब भारत का हर वर्ग, हर क्षेत्र आत्मनिर्भर और सशक्त होगा। जब नारी मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तभी परिवार, समाज, प्रदेश और राष्ट्र सशक्त बनेगा। अंत में हम यही कहेंगे कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। आप सभी बहनों को प्रणाम।
1: कहो लली।
2: हाँ हो बहनी लोगन, देखा नीके का वार्ता सुन लीन की सशक्त नारी से कैसे समाज उन्नत हो सकेला। वार्ताकार रहलीन है डॉक्टर माधवी तिवारी। और यही तरह का सोच सब बहनी लोगन के बनावे के चाहिए कि हम अपने ताकत की पहचानी, अपने अस्तित्व का रक्षा करे बदे हर वक्त आगे रही।
1: भाई अस्तित्व के आगे रक्षा करी, कुल बात तो ठीक है, ठीक कहा था, लेकिन अब कहीं के कुछ गीत गौ नहीं भी होए के चाहिए, तो लगे हाथ हम देर न करब लाली, तो के नीके का गीत सुनाती सुना।

0: बड़ा मीठ का गाना सुनवलू है, मीरती बहन जैसे मीरती नाम तोहार वैसे का गीत सुनवाई दिल।
1: का करी लाली, जब तू साथे रहलो तो हमार मन अपने आप है जो उन्होंने चुनहराए लागेला, अच्छा लागे लागेला कि भाई तू इतना प्रेम से हमसे बतियावे लू कि का कही हमार मन अपने आप है जो मन सायन हो लागे।
0: देखा प्रेम है तो पूरा जिंदगी आसानी से कट जाए ले, खाली मनई के एक दूसरे के संगे नहीं, संगे ऐसा चाहिए ना कि जीव जंतु जौन पशु पक्षी सब कर ध्यान रखे के चाहिए। अगर देखा हमन इनकर ध्यान न रखब तो ई लोगन तो बिना मुहे कहुन कैसे जइए दाना पानी मांगे।
1: ये लाली हो देखा हो, यही वजह हम प्रयास करी ला ना कि भाई अपने तो अपने अगल बगल के लोगन के भी कहिला कि देखा ये जो पशु पक्षी पक्षी का बात करत हूँ ना, तो भाई केहू से मांगत जइए नहीं दाना पानी, तो कल का जला ना कि देखा अपने घरे के बहरे जो है ना नाद बात में पानी रख देवल जला, कुछ बहनी बहनी लोग कि भाई थोड़ा दाना छिड़ देनी छते पर पानी रख देनी, तो भाई ऐसे का होला ना कि भाई चिड़िया हुआ चुंगा हुआ कौआ हुआ जे भी हो माला हो तो भाई वो पानी दाना के मिल जाता
0: बिल्कुल। और उनकर भी पेट भर जाए ये तरह से तो उनके भी अंतर आत्मा तृप्त होई हो। हाँ भाई सब केहू जीवे है, आ जाना ना जब सबके पानी पियावत हो तो हम लोगन के घरे जब केहू आवे ला ना तो सबसे पहले पानी मांगेला। हाँ तो पानी के संगे संगे अगर कुछ शीतल पेय ओके दे दिहल जाए तो ओकर तक कलेजा तर हो जाए।
1: भाई तर करे का काम तो कर लू और नमकीन मीठा खियाओ के बात कर लू, तो हम कहे कि काहे ने कुछ हम लोग बही लोगन के जो शीतल पेय पदार्थ बता दिल जाए, तो बताई का बताओ थू।
0: देखा हो पहले तो एक घड़ी अगर नींबू का पानी नींबू का शरबत सिकंजी बना के दिहल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेला। एकरे साथे साथे आम जो ना, हाँ आम का पन्ना अगर बहनी लोगन बनावत है इन आम के का करे के है भाई, छोट छोट आम हो ओके उबाल लें, आ पुदीना हम मरचा है हरियर ओके बढ़िया से पीस लें, काला नमक है जीरा भूज के पीस के रख लें, आ सब के खाली उबाल के छिल के आम के ओमन ओकर जो गुदा है बढ़िया से निकाल के छान लें।
1: आम का पन्ना तो बनाओ के बात कर तू भाई लोगन के और कहीं कि इतना बढ़िया बढ़िया बताओ थो, तो हम कहें कि भाई

0: जब आम का नाम ले लूँ है तो आम का जब चटनी बन जाए कोई बढ़िया से बना ला पुदीना इसको डाल के तो कहीं सतुआ घोर दा, और सतुआ में जैसे काला नमक काला जीरा और थोड़ा सा आम का चटनी डाल के अगर चाहा तो थोड़ा महीन महीन प्याज में डाल दा और खूब बढ़िया से जो है कोई फेट करके ओकर जो है कहला लस्सी, तो सत्तू का लस्सी बनावा और लाली सबके पियावा तो कितना अच्छा लगे।
1: बहुत अच्छा लगी हो। और यही में देखा एक ठे है सौंफ का शरबत, सौंफ के अगर पीस के ऊपर पाउडर बना ला हाँ, आ खूब ठंडा पानी रहे वही में सौंफ के घोल के बढ़िया से रख दा, आधा घंटा ले रखल रही। ओकरे बाद अगर उमन पुदीना भी डालना चाहत हो तो डाल ला, तनी सा चीनी डाले के है और तनी सा काला नमक डाले के है, आ
0: अच्छा
1: कुल बढ़िया से घोल के छान के रख दा, ठंडा हो जाए और जब ओके केहू आवे तो दा ओके पिए के, तो देखा ना ओकर स्वास्थ्य भी सही रही और पिए में एक अलग तरह का स्वाद लगे।
0: तो को लाली हो एक ही जन हो कि हम लोग डब्बा में बंद करके जो आजकल भाई फ्रिज तो सभी के घर में होता तो उनमें रख लेवल जाए
1: हाँ
0: और जे
1: बिल्कुल
0: क्यों आवा तो फिर भाई ओके हम लोग ये ना हो कि तुरंत बनावा तुरंत खत्म हो जाए, एक ही हम लोग रख के भी 2 दिन 1 दिन रख के भी पी पिया सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आ ये तरह से ना का रही कि गर्मी में जोन पानी का तासीर है वो बराबर शरीर में बनल रही, केहू के पानी का कमी वाली समस्या ना हो।
0: देखो बड़की भौजी का करने जाने लो अपने घरे में ना क्यारी में पुदीना हुआ है तो पुदीना ढेर सारा लिया उन्हें कि साफ करके खूब बढ़िया सा पीस करके और कोनो बर्तन में रख देनी, और जब के धूपे से आवला ना तो वही पुदीना में थोड़ा सा काला नमक थोड़ा काला जीरा थोड़ा नींबू डाल के और बढ़िया सा घोर के पिया देनी ना तो देखा मन कितना अच्छा सा हो
1: और
0: जाला।
1: सबसे निक तो हमके दही का लगेला हो कि दही का अगर घोर के अब पिया दे मनई उमन तनी सा ठंडा पानी और चीनी घोर के, तो पेट में गदगद भी हो जाएला, खाए का माने भूख भी रही तो खत्म हो जाए, आ एकदम समझ ला ठंडा ठंडा फायदा करेला
0: और
1: वो।
0: हम कहें कि भाई लगे हाथ हम एक और बात बता दें कि बहन लोग बेल मिला था खूब टाइम देखा गांवन में तो भाई बेल का पेड़ भी होता तो बेल का शरबत भी हम लोग के सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होला, तो कहीं जो निकुल घरे के अगल बगल रह वाला सामान हुआ ना खाए पिए और गर्मी में खा पी के खूब स्वस्थ रहें।
1: बिल्कुल इतना पिए वाला चीज हम लोगन शीतल पेय बता देली, अब चला हाली मन भी कहत हो कि तनी बेल तोड़ ले है तो ओके निकाल के शरबत बनावल जाए, तू ही पिया हमहू पिए, तो चला बहनी लोगन से अब विदा लिहल जाए और कहल जाए
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगनैया। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं गीतांजलि मौर्या। इनके स्वर में आइए सबसे पहले सुनते हैं पूर्वी।

0: छपरिया के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी गीतांजलि मौर्य। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। सुनेंगे मिड डे न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: in Singapore. In a social media post, the Defense Ministry said the talks focused on enhancing bilateral defense cooperation, strengthening military-to-military ties, and exploring opportunities for defense-industrial collaboration, reflecting the growing strategic partnership between India and the Netherlands. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto are taking on Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thang Ri and Toh Yi in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति U Min Aung Hlaing 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र

0: सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ओ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़न एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारत

0: चौथे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमरीका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है।

0: और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडिया वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम गीतांजलि।

कोई पूछे तुमसे कौन हूं मैं, कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है पक्का कच्चा सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, जज्बात को ढके एक पर्दा बस, एक बहाना अच्छा सा। जीवन का ऐसा साथी है जो पास होकर भी पास नहीं, एक अजनबी सा है वो लेकिन कोई खास नहीं।

एक साथी जो अनकही सी कुछ बातें कह जाता है, यादों में जिसका धुंधला सा एक चेहरा ही रह जाता है। यूं तो उसके ना होने का मुझको कोई गम नहीं, पर कभी कभी वो आंखों से आंसू बन के बह जाता है। यूं रहता तो मेरे जहन में है, पर आंखों को उसकी तलाश नहीं। एक अजनबी सा है वो, लेकिन कोई खास नहीं।

साथ बनकर जो रहता है वो दर्द बांटता जाता है, भूलना तो चाहूं उसको पर वो यादों में छा जाता है, अकेला महसूस करूं कभी जो सपनों में आ जाता है, मैं साथ खड़ा हूं सदा तुम्हारे कहकर साहस दे जाता है, ऐसे ही रहता है साथ मेरे कि उसकी मौजूदगी का आभास नहीं, एक अजनबी सा ही है वो लेकिन कोई खास नहीं।

0: ताजू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर?
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। लोगों भला इस शहर में कैसे जिएंगे हम, जहां हो जुर्म तन्हा सोचना लेकिन सजा आवारगी। ये दर्द की तन्हाइयां, ये दश्त का वीरान सफर, हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी।

वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। कहां से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है, इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है। महक रही है जमी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज की गीतांजलि अब यहीं संपन्न होती है। दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र आशुतोष को। नमस्कार।

0: Akashvani at 90.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। शाम 5 बजे से सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप और वेव्स OTT पर। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ हो रही है आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: जय हिंद नन्हे साथियों, मैं हूँ आपकी दीदी शीला और आज हमारे साथ है हमारी प्यारी सी दीदी संध्या। तो बताइए संध्या दीदी, कैसी हैं आप?
1: हम तो बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि हमारे नन्हे साथी भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल मजे में होंगे दीदी, क्योंकि नन्हे साथियों की गर्मी की छुट्टियां जो चल रही हैं और कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग भी कर रहे होंगे हमारे नन्हे साथी। और पता है दीदी, कहीं ना भी जाएं तो नानी के घर तो जरूर जाना ही है इन छुट्टियों में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि गर्मी की छुट्टियां शायद इसीलिए होती हैं कि हमारे नन्हे साथी घर नानी के घर, दादी बुआ चाची के घर जा सके और खूब मस्ती कर सके।
0: सही कहा आपने कि नन्हे साथी नानी के घर, बुआ के घर या कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो सबसे जरूरी बात है कि हमें मैनर होना चाहिए, एक डिसिप्लिन में हम रहें, और सबसे जरूरी है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनको रेस्पेक्ट दें। आपसे जो भी बड़े हैं उन्हें प्रणाम कहिए, उनकी बातों को इग्नोर मत करिए, बल्कि उनका कहना मानिए।
1: हाँ, ये बात आपने सही कहा शीला जी। देखिए, बच्चों के संस्कार का पता तो तभी चलता है ना कि जब बच्चे हमारे से जो बड़े होते हैं उनको प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, तो इससे लगता है कि बच्चे संस्कारी हैं और बच्चों को अच्छा संस्कार भी दिया गया है। और ये बात तो होनी भी चाहिए क्योंकि नानी घर गए ना तो पूरी छूट नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नानी तो डांटेंगी नहीं, लेकिन हर चीज का हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए।
0: सही कहा आपने संध्या दीदी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में, अनुशासन में ही अच्छी लगती है। अगर हमारे नन्हे साथी शरारतें भी करते हैं तो थोड़ी समय के लिए कर लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा शरारत नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरों को तकलीफ हो। क्योंकि देखिए, किसी के घर अगर हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, तो अगला इंसान भी सोचेगा कि बहुत ज़्यादा शैतानियाँ हो रही हैं, बच्चों आप लोग अपने घर जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हम गए हैं तो उनका कहना माने, उनकी मदद करें, जिसके घर गए हैं कि उन्हें भी ऐसा ना लगे। कुछ नहीं तो पानी की बोतलें लगा के रख दे फ्रिज में, तो थोड़ा
1: हाँ,
0: काम
1: छोटे
0: तो
1: छोटे
0: हल्का हो
1: काम
0: जाएगा।
1: करते रहेंगे ना तो नानी मामी सबको अच्छा भी लगेगा और खेल खेल में कुछ काम भी हो
0: हाँ, और
1: जाएगा।
0: नानी कहेंगी कि अगले साल गर्मी की छुट्टियों में जरूर आना।

0: गीत सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा संध्या दीदी। और अब बारी आ गई है हमारी रोचक दीदी की।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और रोचक दीदी से सुनते हैं रोचक जानकारियाँ।
0: हाँ, और उनके पिटारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो चलिए देखिए आज वो कौन सी जानकारी देने वाली हैं हम सबको।
2: बच्चों नमस्ते, रोचक दीदी आ गई है आज फिर लेकर जानकारियों से भरा अपना पिटारा। तो आज रोचक दीदी के पिटारे से क्या निकलेगा? तो सुना आपने बच्चों, इस आवाज को सुन के क्या याद आया? अरे भाई, जब छुट्टियां होती हैं तो अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी या अपने गांव जाने के लिए हम किस परिवहन माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? अरे भाई, आपकी और हमारी पसंदीदा ट्रेन, और क्या। तो चलिए आज इसी ट्रेन में बैठकर थोड़ा समय में पीछे चला जाए और आपको बताएं कि अपने देश भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। बच्चों, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, है ना? वैसे सामान पहुंचाने के लिए भी ट्रेन का उपयोग किया जाता है, और समय के साथ ट्रेन में और स्टेशन्स पर जो सुविधाएं हैं उनमें काफी बदलाव आया है। आपको बताएं बच्चों, भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। देश में पहली ट्रेन साल 1853 में चलाई गई। 16 अप्रैल साल 1853 के दिन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी पहली भारतीय यात्री ट्रेन। और अब आप पूछेंगे कि विश्व की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी दीदी? तो आपको बताऊं, 27 सितंबर 1825 के दिन विश्व की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बच्चों, कोयले और भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 27 सितंबर 1825 के दिन भाप इंजन की सहायता से रेल के डिब्बों को खींचा गया, जिसमें कई यात्री सवार थे। इंग्लैंड के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन के बीच चलाई गई थी ये ट्रेन। जरा सोचिए तो, आज नई टेक्नोलॉजी के चलते ट्रेनों की रफ्तार बेहद तेज हो गई है और ट्रेनें भी कई प्रकार की हो गई हैं। थोड़ा उस समय के बारे में सोचिए बच्चों, जब पैदल या घोड़ा गाड़ी पर चलने वाले लोग पहली बार ट्रेन के डिब्बों में बैठकर सफर के लिए चले होंगे। कितनी रोमांचक यात्रा रही होगी वो, है ना? वैसे आज भी ट्रेनों की यात्रा कम रोमांचक नहीं है भाई। जब ट्रेन के डिब्बे सरपट इंजन से लगकर दौड़ते हैं और खिड़की से बाहर झांकने के बाद पेड़ मकान पशु पक्षी सब पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो बस लगता है कि हमारी ही रफ्तार सबसे तेज है। आज भी ट्रेन का सफर बेहद रोमांचित करता है। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आप ट्रेन से कहाँ जाएंगे? सोचिएगा जरूर। फिलहाल रोचक दीदी अपना पिटारा आज यहीं समेटेगी, फिर से आपसे मिलने आऊंगी। बाय बाय।
0: भाई संध्या दीदी, रोचक दीदी ने देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो हमें तो सुन के बहुत सी जानकारियां मिली हैं, हमारे नन्हे साथियों को भी जरूर मिली होंगी।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, ना हमारे नन्हे बच्चे जो है ना रोचक दीदी से सारी चीजें सीखते हैं और इसका फायदा भी ना ये छुट्टियों में ज्यादा उठाते हैं। देखिए ना, हमारे बच्चों को ना कुछ नया जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि छुट्टी हुई है ना तो कुछ सीखते रहें तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों दीदी?
0: हाँ दीदी, देखिए आपने सीखने की बात कही है ना, तो हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे एक छोटी सी दो लाइन की कविता मैं कहना चाहूंगी कि फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीर्ष झुकाना। यानी कि अगर हम प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, तो अच्छे संस्कार सीख सकते हैं। और गर्मी की छुट्टियां हैं तो हर दिन कुछ नया सीखिए। इसके अलावा
1: सही है। हाँ बिल्कुल सही कहा है। और दीदी ने कितनी अच्छी प्रकृति की बातें करी हो, और प्रकृति में ही रह के अगर हम कुछ उनके सजावट की चीजें जैसे पेड़ पौधे हैं, गर्मियों में देखते ना बच्चे कि पानी की बहुत जरूरत होती है, तो हमें छोटे छोटे जो है उन पौधों को लगाने के लिए पॉट्स बनाने चाहिए। घर में जो वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं उन्हीं से ही हमें कुछ डेकोरेशन की चीजें बनाना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि हम उसको खूब अच्छे से बनाएं, सजाएं, कलर करें। इसमें हमारा समय भी जो है वो हो जाता है, और हम लोग कुछ नया सीख भी लेते हैं, और सजाने के लिए अच्छी चीजें भी तैयार हो जाती हैं,
0: और मन भी खुश हो जाती है, और एक सक्रियता भी आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: और कई कई जगहों पे ना संध्या दीदी, बहुत सारे संस्थाओं में कहीं आसपास समर कैंप भी चल रहे हैं, तो अगर आपके घर के आसपास हो तो आप चाहें तो जा सकते हैं कुछ नई चीजें सीखने के लिए, अगर आपको शौक हो तो।
1: हाँ हाँ, और आजकल तो देखिए ना कितना अच्छा चलता है समर कैंप में, डांस सिखाते हैं, वाद्य यंत्र जो है बजाना सिखाते हैं, और हमें कहीं कहीं पे ना ड्रामा वगैरह भी सिखाते हैं, और इसकी हमें प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में भी तो ये सारी चीजें हम लोगों के एनुअल फंक्शन वगैरह में होती है ना, और एक महीने में अगर हम लोग ये सब चीजें सीख जाते हैं तो हमारे लिए ही फायदे की चीजें हैं।
0: लेकिन कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब भी आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो वो जरूर आपके जीवन में आगे कुछ काम आएगा ही।
1: नन्हे साथियों देखिए, एक चीज का बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में हमेशा जो है ना खा के और पानी पी के ही घर से निकलिए, क्योंकि कहीं लू ना लग जाए जिससे आप बीमार ना पड़ जाए। आप समर कैंप करने जा तो रहे हैं लेकिन खा के और पानी पी के जरूर जाइएगा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, हम कहीं बाहर गए और फिर वहां से लौटने के बाद घर आकर तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, खासतौर पर ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, सर्द गर्म जो असर है ना वो हो जाता है। इसलिए अगर आप घर आ गए तो 10 मिनट रुक कर ही पानी पिएं।
1: बिल्कुल,
0: इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए नन्हे साथियों। छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इतनी गर्मी में पानी पीजिए, और जो भी तरल पदार्थ है, शरबत, लस्सी, छाछ, इनका उपयोग करिए, और इन गर्मियों से बचिए और गर्मियों को एंजॉय करिए। और अब हमें दीजिए अनुमति, तो आपसे कहते हैं जय।

अभी बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। अब युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुने। ये वाणी

0: तो सो मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते, रील्स देखते देखते और दोस्तों के मैसेजेस का जवाब देते देते अगर आप कुछ मिनट हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आयुषी
1: और मैं हूँ कृतिका, और हम दोनों की तरफ से आपको
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आगे कुछ मिनटों तक हम करेंगे बातें कुछ खास विषयों पर, जानेंगे कुछ रोचक तथ्य और साझा करेंगे ऐसी जानकारियाँ जो न केवल ज्ञान बढ़ाएंगी बल्कि सोचने का एक नज़रिया भी देंगी।
0: और इसी के साथ दोस्तों सुनेंगे हम कुछ मज़ेदार गाने भी। तो अपने काम की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दीजिए, रेडियो की आवाज़ को थोड़ा बढ़ा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और सुनते हैं इस प्रोग्राम का पहला गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ
1: 0542227658।
2: लो अभी फोन लगाता हूँ।
1: 0542227658।
5: दोस्तों जब भी गोवा का नाम आता है दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खूबसूरत बीच, संगीत, रंग बिरंगे त्योहार और छुट्टियों का मजा, है ना? लेकिन गोवा सिर्फ पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि संघर्ष और गौरव की भी कहानी है।
6: बिल्कुल कृतिका, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा ने विकास और लोकतंत्र की एक नई यात्रा शुरू की। आज गोवा अपनी सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छता, शिक्षा और पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखता है।
5: बिल्कुल सही। दोस्तों गोवा हमें ये भी सिखाता है कि अपनी संस्कृति को संजोते हुए आधुनिकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। शायद यही वजह है कि गोवा भारत का मिनी ग्लोबल पहचान जैसा महसूस होता है।
6: बिल्कुल। और दोस्तों इसी के साथ जरा आप ये सोचिए कि अगर आपकी प्लेट में आलू गायब हो जाए तो क्या होगा? न समोसे का वही स्वाद आएगा, न आलू का पराठा बनेगा, न फ्रेंच फ्राइज बनेंगे और न ही चिप्स होंगे।
5: सच कहें तो आलू भारतीय रसोई की ऐसी खिलाड़ी है जो लगभग हर टीम में फिट बैठ जाता है। इसी महत्व को देखते हुए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है।
6: आलू केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता दोस्तों, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। भारत दुनिया के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल है और लाखों किसानों तक इसकी खेती से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि आलू कोई साधारण, कई बार इसको साधारण समझ लिया जाता है, लेकिन यही साधारण दिखने वाला आलू असाधारण योगदान देता है।
5: बिल्कुल सही। यह दिन हमें याद भी दिलाता है कि हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में किसानों का कितना बड़ा योगदान है। इसीलिए अगली बार जब आपकी प्लेट में आलू का कोई भी डिश हो तो उसके पीछे किसानों की मेहनत को भी जरूर याद कीजिएगा।
6: बिल्कुल साथी। और इसी के साथ दोस्तों जीवन में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका नाम लेते ही श्रद्धा अपने आप मन में जाग उठती है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ने प्रेम, सेवा, समानता और मानवता का संदेश दिया।
5: उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया और
6: आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया।
5: उनका शहीदी दिवस हम साहस और सत्य के लिए खड़ा होने की प्रेरणा देता है।
6: कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों को सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और आज जब दुनिया में सहिष्णुता, आपसी सम्मान और मानवता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस होती है, तब गुरु अर्जुन देव जी की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। युवाओं के लिए उनका जीवन एक संदेश है, ज्ञान प्राप्त करो, दूसरों की सेवा करो और सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहो। और दोस्तों इसी के साथ हम लेकर आ गए हैं सैटरडे स्पेशल सेगमेंट यूथ जंक्शन, जहाँ

हमने बातें की हमारे श्रोताओं से, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि गर्मियों से बचने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं, साथ ही हमने सुने कुछ उनके पसंदीदा गाने, तो चलिए आपको भी सुनाते हैं।

0: श्रोताओं, आपको पता है आपने डायल किया है 0542-222-1052।
1: ये क्या हुआ?
0: इंतजार खत्म हुआ।
2: सलाम सलाम।
0: शुरू हो गया है आपका पसंदीदा सेगमेंट यूथ जंक्शन।
3: नमस्कार, यू जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका?
4: नमस्कार, हमारा नाम डॉक्टर प्रांजल कुमार पांडे है। हम PHU डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स के PhD से स्कॉलर हैं।
3: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, इस बढ़ती गर्मी में समस्याएं हेल्थ के लिए जो आ रही हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल में क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है?
4: वेल, लाइफस्टाइल में इनका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं ये हीट वेव्स पे ध्यान देना चाहूंगा। हालांकि अभी 2-3 दिनों से इनका रिलीफ मिला है हम लोगों पे, बट ये जो सीवियर हीट वेव्स है, इस टाइम इनके पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। कभी कोई स्ट्रोक से हीट स्ट्रोक किसी को लग रहा, कभी डिजीनेस या नौजिया टाइप का। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस टाइम ये जो सीवियर हाई टेम्परेचर्स हैं, दोपहर में 12 से 4 से लोग अगर दूर ही रहें तो बेहतर है, अंदर रहें और अच्छे से अपनी ख्याल रखें।
3: और ये बताइए कि ये जो गर्मी बढ़ रही है हर साल, इसका क्या रीजन हो सकता है?
4: वेल, अर्बन एरियाज में आप कंस्ट्रक्शन को कह लो, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हम ऐसे कॉन्क्रीट वॉल्स ऐसे खड़े कर रहे हैं, एंड फॉर दैट हम पेड़ों को काट रहे हैं। और ट्रैफिक, जैसे जैसे बहुत सारी कारें बिकती चली जा रही हैं अर्बन एरियाज में, तो उनसे जो ऐसा ब्लैक स्मोक रिलीज होता है, तो ये सारे ऐसा टेम्परेचर्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनसे निकले जो धुएं हैं, स्मोक है, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से टेम्परेचर बिल्डअप होता है और गर्मी सालों साल ऐसा हमेशा सब बढ़ती चली जाती है। तो एक ये डिफोरेस्टेशन और कॉन्क्रीट वॉल्स ऐसा डेवलपमेंट के नाम पे, और ये जो ट्रैफिक्स है और व्हीकल्स का ऐसा ज्यादा ज्यादा खरीदा जाना है, ये अभी प्राइम इम्पोर्टेंस है इनको बढ़ाने के लिए। ये आप रूरल और अर्बन में टेम्परेचर्स का डिफरेंस देख पाएंगे।
3: ओके, जो हमारे युवा हैं उनको जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
4: इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले तो एक सोशल मीडिया पे एक थोड़ा सा रियलिस्टिक होके कोई भी मुहिम चलाएं, जैसे कि पहले इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा टेम्परेचर बढ़ता है तो, जैसा मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स को बताया है, और इनसे क्या क्या बचाव किया जा सकता है उसके बारे में ध्यान दें, और ये बताते हुए पेड़ लगाएं। बार बार जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर को हम कम कर सकने की उम्मीद में होंगे। हम ये नहीं कह रहे पूरी तरीके से, बट एक छोटा छोटा ऐसा स्टेप लिया जा सकता है। जगह जगह पे डिहाइड्रेशन के लिए पानी रखते हैं, जो कि जिसपे कोई बिल्स ना हो, जिसपे कोई फीस ना हो, सो दैट कि किसी को भी इस ऐसा गर्मी में इतना परेशान होने की जरूरत ना पड़े, और लोगों को पता हो इनसे प्रॉब्लम क्या है, सो दैट कि वो उससे बचाव कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ा जा सकता है।
3: तो प्रांजल, आप गर्मियों से बचने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं?
4: वेल, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरी पूरी बॉडी हाइड्रेटेड हो, और अपने साथ हमेशा आप एक इलेक्ट्रोलाइट रखिए, जैसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है आपका कोकोनट वाटर, या बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो ORS रखें अपने पास, या माता पिता उनके उनके बॉटल में ORS घोल के दें। तो इस तरीके से लाइट वेट कॉटन फाइबर्स के ऐसे कपड़े पहने जो कि पूरे के पूरे आपके बॉडी को कवर करें, सो दैट कि आपके धूप जो है वो, या UV रेडिएशन जो है वो आपके स्किन को प्रभाव ना डाले। और कोशिश करें कि 12 से 5 अवॉइड करें बाहर जाना।
3: तो प्रांजल, आपने हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को इतनी अच्छी जानकारी दी है, और धूप से बचने के लिए आपने इतने अच्छे उपाय बताए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यू जंक्शन में आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
4: सबरिया, MSD मूवी का।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम, मेरा नाम अंकित है।
0: अंकित, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं बनारस से बात कर रहा हूँ मैम।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं बैंक में काम करता हूँ।
0: अच्छा, तो आप हमारा युववाणी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: यस मैम, बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली सुनता हूँ।
0: हीट वेव के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप उससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं?
1: मैम चूंकि हम बनारस में रहते हैं तो यहाँ हीट वेव तो बहुत ज्यादा ही प्रचंड है। जो मैं डेली करता हूँ वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखता हूँ, पानी पीता हूँ और ज्यादा ट्राई करता हूँ धूप में ना ही निकलूँ।

0: हेलो, यू जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: जी, मेरा नाम हर्ष कुमार सिंह है।
0: अच्छा हर्ष, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैम, हम वाराणसी से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा हर्ष, ये बताइए करते क्या हैं?
1: अभी तो पढ़ाई चल रही है अभी फिलहाल तो, और ऐसे पार्ट टाइम में कुछ वर्क वगैरह हो जाता तो हो जाता है मैम।
0: अच्छा, तो हर्ष ये बताइए, आपको हमारा जो युववाणी कार्यक्रम है वो कैसा लगता है, सुनते हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छा लगता है मैम, सुनते हैं हम, काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है उसमें, और
0: जी
1: कंपटीशन का एक तरीके से थोड़ा माहौल रहता है उसमें, तो काफी
0: हाँ।
1: अच्छा लगता है मैम देख के वो भी।
0: तो हर्ष ये बताइए, आप धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए अपने आप को कैसे धूप से प्रोटेक्ट करते हैं?
1: मैम उसमें पहली बात तो हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खान
0: जी
1: पान में हमें जितना भी ज्यादा वाटर इनटेक वाली चीजें हैं, जिससे वाटर हमारे बॉडी में ज्यादा जा सके, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे
0: बिल्कुल
1: वाटर मिलन हो गया, और भी पानी ज्यादा ज्यादा पीना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर बहुत गर्मी बाहर है तो खुद को थोड़ा सेफ्टी के साथ ही थोड़ा सा बाहर निकले, माहौल में निकले ऐसे।
0: हाँ, और बाहर कोशिश करें कि कम ही जाएं।
1: जी मैम बिल्कुल कम करने हैं, और जाए भी तो थोड़े सेफ्टी के साथ जाए, प्रॉब्लम कुछ ना हो।
0: हाँ, तो हर्ष ये बताइए, आपने यू जंक्शन में फोन किया है तो आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहेंगे?
1: मैम मेरा एक बहुत फेवरेट गाना मैम, जो कि अभी ऑल टाइम फेवरेट है मैम, वो
0: जी
1: तुम ही हो सॉन्ग है, आशिकी 2 का।

0: नमस्कार, यू जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? अच्छा,
1: नमस्कार, मनदीप मिश्रा।
0: क्या करते हैं आप पंडित?
1: मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैम, पटना से।
0: अच्छा, किस चीज की इंटर्नशिप कर रहे हैं?
1: मेरा MBBS अभी कंप्लीट हुआ है तो इंटर्नशिप शुरू हुई है
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी। उनको सुनना बहुत पसंद है मुझे।
0: तो ये बताइए कि गर्मियों के मौसम, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लोग घर से निकलने में 10 बार सोच रहे हैं, तो आप ये बताइए कि गर्मियों से बचने के लिए आप क्या उपाय अपनाते हैं?
1: हम लोग अगर हमारे OPD में पेशेंट आते हैं तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंप्लेन लेके आते हैं कि डायरिया है, लूज और वॉमिटिंग हो रहा है, मल्टीपल एपिसोड आ रहा है। बोलते हैं उन्हें कि इलेक्ट्रोलाइट्स लें, पानी बहुत ज्यादा पिए और
0: जी,
1: अब बाहर की चीजें नहीं खाए, खुद को बचे, धूप से बाहर निकलने से बचे।
0: तो मनदीप, आप यू जंक्शन में कॉल किए हैं, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहेंगे आप?
1: आपकी पसंद के कोई गाने हो?

0: चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे कार्यक्रम के उस हिस्से का जिसका इंतजार कई श्रोता करते होंगे। जी हाँ, यूथ डायरी।
1: जहाँ दोस्तों हम रोज सीखते हैं कुछ नए शब्द और बढ़ाते हैं अपनी वोकैबुलरी को। तो चलिए जान लेते हैं आज के हिंदी और इंग्लिश के शब्द। और आज का हमारा हिंदी का शब्द है प्रत्यावर्तन, जिसका अर्थ होता है वापस लौटना या पुनः आना। और इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं कि सर्दियों के बाद पक्षियों का प्रत्यावर्तन देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल सही। और अब बात करेंगे हमारे अंग्रेजी के शब्द का। तो हमारा आज का अंग्रेजी का शब्द है डिस्पिरेट, जिसका मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, या फिर आसान आसान या भिन्न। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन अगर हम करना चाहें तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, पीपल फॉर्म डिस्पिरेट बैकग्राउंड्स वर्क टुगेदर।
1: तो दोस्तों ये थे आज के दो नए शब्द, प्रत्यावर्तन और डिस्परेट। और अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जानने की। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। लेकिन लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कल का सवाल और उसके सही जवाब, साथ ही विनर्स के नाम। तो आपसे हमारा कल सवाल था कि वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 किस देश ने लॉन्च किया है, जिसका सही जवाब है भारत। और जिन साथियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है चंदा चंदौली से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, एमपी से। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारा युवाणी कार्यक्रम सुनते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों अब बारी आ गई है हमारे आज के सवाल को जानने की। तो अपने रेडियो की आवाज़ थोड़े बढ़ा लीजिए और ध्यान से सुनिए आज का सवाल। आपसे हमारा आज का सवाल है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष में आयोजित की जाती है। एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा रही हूँ, आप सुन लीजिए। भारत में जनगणना कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी यूथ AIR वाराणसी पर, या फिर हमारे ईमेल आईडी youth AIR VNS@gmail.com पर। तो फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और हमें अपना जवाब भेज दीजिए।
1: बिल्कुल। और दोस्तों हर दिन अपने साथ कुछ नई यादें और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं लेकर आता है। आज यानी 30 मई भी

0: कुछ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और प्रेरणादायक घटनाओं का साक्षी रहा है। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों खास है।
1: 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता का के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस दिन उदंत मार्तंड नामक पहला हिंदी समाचार प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। यही कारण है कि हर वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें भाषा, विचार और अभिव्यक्ति की शक्ति का महत्व बताता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, आज ही के दिन यानी 30 मई 1987 को गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत के लिए प्रसिद्ध गोवा आज देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाता है। इसलिए यह दिन गोवा राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
1: बिल्कुल सही। विश्व इतिहास की बात करें तो 30 मई 1911 को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मोटर रेसों में से एक इंडियापोलिस 500 का पहला आयोजन हुआ था। आज भी यह प्रतियोगिता
0: मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में विशेष स्थान रखती है। दोस्तों, 30 मई 1922 को अमेरिका में लिंकोल्न मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। यह स्मारक लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व की प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है।
1: बिल्कुल। और साहित्य जगत में भी 30 मई का विशेष महत्व है। वर्ष 1967 में महान लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केस के प्रसिद्ध उपन्यास 100 Years of Solitude का प्रकाशन हुआ था, जिससे विश्व साहित्य की महान कृतियों में गिना जाता है।
0: और दोस्तों, अब बारी है आप सभी के रोजगार की सूचना देने की। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मंडी पर्यवेक्षक, अमीन नीलामीकर्ता, सहायक प्रबंधक, क्लर्क, सह टाइपिस्ट, कैशियर, सह क्लर्क, लेखा क्लर्क, सहायक कोषागार लेखाकार, लेखा परीक्षक, केंद्र प्रभारी, कार्यकारी अधिकारी जैसे कई विभिन्न पदों के लिए अधिसूचना जारी की है।
1: यह भर्ती कुल 2,516 पदों के लिए घोषित की गई है। UPSC PCS भर्ती 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 18 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी upssc.gov.in पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं, अब जब इतनी सारी जानकारियां हो गई हैं तो क्यों ना थोड़ा अपने मनोरंजन का भी प्रबंध किया जाए और सुना जाए इस गीत को।

0: दोस्तों, आज का युवा तेज है, स्मार्ट है, मल्टीटास्किंग भी करता है, लेकिन सवाल है, क्या हम अपने लिए सीखने का समय निकाल पा रहे हैं?
1: और सीखने की बात आए तो किताबों का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं होती, बल्कि सोचने का तरीका बदलने की ताकत रखती हैं।
0: बिल्कुल, अगर कभी गौर किया है, अच्छी किताबें आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकती हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं, ऐसी जगहों पर ले जा सकती हैं जहां आप कभी गए नहीं, और ऐसे विचार दे सकती हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे।
1: आज सोशल मीडिया पर हम घंटों स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी 10 पेज पढ़ना मुश्किल लगने लगता है। और मज़ेदार बात यह है कि एग्ज़ाम आते ही वही किताबें सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन सच कहें तो पढ़ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि हमें डेली लाइफ में इसको उतारना चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर आप बोलने के तरीकों को बेहतर करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, आइडियाज़ डेवलप करना चाहते हैं, तो पढ़ना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत बड़ी हो। रोज़ सिर्फ 10 मिनट पढ़िए। एक कहानी, एक कविता, एक आर्टिकल या अपने पसंद की कोई भी किताब।
1: क्योंकि दोस्तों, जो युवा पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, और जो सीखना बंद नहीं करता, उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते।
0: तो आज का एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। आज से हर दिन थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सीखेंगे और खुद का बेहतर वर्जन बनाएंगे।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, पुस्तकों से प्रेम कीजिए, क्योंकि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे आपके सपनों को दिशा भी देती हैं।
0: इसी खूबसूरत संदेश के साथ आज के युवानी कार्यक्रम में से दीजिए हमें अनुमति। मैं हूँ कृतिका।
1: और मैं हूँ आयुषी, और हम फिर मिलेंगे युवाणी के अन्य किसी अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये वाणी प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में भोजपुरी में समाचार रिले किया जाएगा हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारण के साथ है हम विकास राय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है लखनऊ में 19 करोड़ रुपया का लागत से बनल नौसेना शौर्य संग्रहालय का दूसरा फेरा नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण कैलें। ए मौका पर आयोजित समारोह के संबोधित करत रक्षा मंत्री कहलें कि ई वाटिका कौनो साधारण पार्क नइखे, बलुक सबके खातिर प्रेरणा का जगह हो।
1: आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। यह सारी चीजें मैं मानता हूँ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, विकास और निवेश का सराहना करत एकर श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगुवाई के दहलें। ए मौका पर मुख्यमंत्री सज्जो नागरिक लोगिन का आह्वान कैलें कि उ सैनिक लोगिन के हमेशा सम्मान दें। मुख्यमंत्री कहलें,
2: अब भारत का सैनिक माइनस डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है, या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है, या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है।
0: नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण समारोह के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को संबोधित कैलें। ए मौका पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, ब्रजलाल आ लखनऊ का महापौर सुषमा खरकवाल के साथे कई गो जनप्रतिनिधि और नौसेना का अधिकारी मौजूद रहलें। लखनऊ का सीजी सिटी में विकसित कैल गेल नौसेना शौर्य वाटिका में स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर्यटक लोगिन बदे खास आकर्षण हो। सतही ऐजा देखावल गेल सज्जो हथियार असली हवें। सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष के नाते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के देखी के सार्वजनिक क्षेत्र का तेल विपणन कंपनियन के 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करे का निर्देश दिले हवें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा बतौले हैं कि सरकार रणनीतिक भंडारण के जरिया से ईंधन सुरक्षा मजबूत करे और बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करे बदे कार कह रही हो। ओहर पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा कहले हवें कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गई हो। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा बिहने दुई पाली में आयोजित हुई। पहली पाली सवेरे 9 बजे से दोपहरिया 12 बजे ले और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से संझा 5 बजे ले चली। परीक्षा बदे प्रदेश के 72 जिलन में 1,011 केंद्र बनावल गेल हो, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दी हैं। परीक्षा केंद्रन पर सुरक्षा और निगरानी का खास इंतजाम कैल जा रहा हो। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करे वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के हिसाब से परीक्षा के पुरहर सुचिता और पारदर्शिता के साथ पूरा करावे बदे हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनावल गेल हो। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस हो। बरिस 1826 में अजुए के दिन ने हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित भइल रहे। एगो रिपोर्ट।
3: 200 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था।

0: चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में उदंत मारतंड समाचार पत्र के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी। उदंत मारतंड से शुरू हुआ पत्रकारिता का यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण औजार बना। बदलाव के दौर से गुजरती हुई हिंदी पत्रकारिता समाचार पत्रों के साथ ही रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनमानस के बीच मजबूत पहचान बना चुकी है। समाचार कक्ष से रितेश।
1: हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौका पर आज प्रदेश के कई जिलन में पत्रकार संगठनन की ओर से गोष्ठियन का आयोजन कई के पत्रकारिता का इतिहास, वर्तमान और भविष्य का संभावना पर चर्चा कैल गई। प्रदेश में बीतल दुई दिन के दौरान तेज बियार चलले और बरखा भइले से तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस लेकर गिरावट दर्ज कैल गई हो। आज वो कई जिलन में बादल छवले रहल, कुछ जिलन में हल्लुकाहे बरखो भइल। मौसम विभाग प्रदेश के कई इलाकन में बिहने तेज बियारी के बीचे बरखा भइले का अलर्ट जारी कैलस। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम रात 9:30 पर आप सुनेंगे। शाम 7:31 पर स्वरबेला के अंतर्गत दीपक कुमार शर्मा से उनका काव्य पाठ आप सुन सकते हैं। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में बेगम अख्तर कलाकार होंगी। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई बीज प्रौद्योगिकी का महत्व विषय पर डॉक्टर अर्चना सान्याल से सतीश कुमार यादव की बातचीत के अलावा गीतांजलि मौर्या के स्वर में लोकगीत का भी आनंद उठा सकते हैं। फिल्म संगीत शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, शाम 7:45 पर रसरंग एवं रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में सुने जा सकते हैं। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी और अब कल दिनांक 31 मई दिन रविवार के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नजर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का प्रसारण समय सुबह 11 बजे से होगा। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र के माध्यम से रात 10 बजे से। अंजुमन गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे मनहर उदास कलाकार होंगे। शाम 7:31 पर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आपके पत्रों के साथ उपस्थित होंगे अरुण पांडेय और सना सलीम। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई प्रसव काल में पशुओं की देखभाल विषय पर डॉक्टर आलोक पांडेय से सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत सुनेंगे। इसके अलावा कल्पना चैटर्जी के गाए लोकगीत का भी आनंद किसान भाई उठा सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता शाम 5:15 पर आज की बात युवाणी कैंपस से यूथ डायरी विश्व घटना चक्र रोजगार सूचना और फिल्म संगीत सुनेंगे। बाल गोपाल कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5 बजे का। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:30 का। लोकरंग फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे जो होगा व्हाट्सएप पर आधारित और प्रसारण समय दिन में 1:30 का। आज इतवार है के अंतर्गत दिन में 1:15 पर झलकी सुनिएगा छटंकी गुरु। लेखक श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता विश्वनाथ पांडेय। हेलो फोन इन फरमाइश दिन में 12 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कल की प्रस्तुति होगी शैलेश दुबे की। फिल्म संगीत सुबह 10:30 पर सुना जा सकता है। सामुदायिक गान शिक्षा पाठ असमिया का समय रहेगा सुबह 10:10 का और लोक संगीत के कार्यक्रम में कल्पना चैटर्जी को आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर। मधुरिमा का समय प्रातः 8:45 का रहेगा और प्रातः 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अली अहमद हुसैन का शहनाई वादन आप सुन सकते हैं।

गुड मॉर्निंग। बनारस का समय प्रातः 7 बजे का रहेगा और श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण समय प्रातः 6:40 का होगा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण समय प्रातः 6:35, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय प्रातः 6:10 और खेती की बातें कार्यक्रम का प्रसारण समय प्रातः 6:05 का होगा। तो ये थे कल दिनांक 31 मई दिन रविवार को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोतम कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। तुम्हारे लिए फिल्म का गीत आपने सुना कार्यक्रम के पहले, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और संगीत जयदेव का था। और अब ये गीत।

श्रोताओं, आवाज लता मंगेशकर की और संगीत आर डी बर्मन का। फिल्म का नाम जमीन आसमान और ये आवाज आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, फिल्म जमीन आसमान के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया इस गीत के साथ संस्कृत समाचार

0: महाराष्ट्रजनपदेषु अद्य प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं विधाय पीतवर्णसञ्चेतना प्रसारिता। ऋतोः प्रतिकूलताकारणेन जूनमासस्य तृतीयदिनं यावत् मत्स्यजीविनः केरललक्षद्वीपतटयोः समुद्रे उद्यमं न कुर्वन्तु इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। सेनाप्रमुखः जनरल उपेन्द्रद्विवेदी अवोचत् यत् भारतीयसशस्त्रबलानि उच्चस्तरीयसतर्कतायां विद्यन्ते। आवश्यकता विद्यते सति ऑपरेशन सिन्दूर 2.0 इति सिन्दूराभियानस्य द्वितीयचरणाय सन्नद्धानि सैन्यबलानि वर्तन्ते। पुणेनगरस्य खडकवासलास्थितायां राष्ट्रियरक्षाकादम्यां स्नातकान् सार्धैकशततमस्य दलस्य पासिंग आउट परेड इति प्रयाणं सम्बोधयता जनरल द्विवेदिना उक्तं यत् सिन्दूराभियाने दृढसंकल्पेन प्रत्युत्तरप्रदातस्य क्षमता प्रदर्शिता। तेनोक्तं यत् एतत् अभियानम् इदानीम् अपि सन्ततं प्रवर्तते। जनरल उवेदी अवोचत् यत् सिन्दूराभियाने भारतीयसैन्यबलानां मध्ये तारतम्यम् अवलोकितम्। सममेव वयं भविष्यकालाय आत्मानं सन्नद्धं कुर्महे। सेनाप्रमुखेण स्नातकाः व्यावसायिकनेतृत्वस्य राष्ट्रसेवायाः च सर्वोच्चमानकान् यथावत् प्रवर्तितुम् आकारिताः।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं स्वविचारान् प्रकटयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 34th प्रभागः वर्तते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः अन्तर्जालीय पटले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय वेबफलकं समेत्य न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप इति तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। प्रमुखः रक्षाध्यक्षः जनरल अनिल चौहानः अद्य नवदिल्लीस्थे राष्ट्रिय समर स्मारके सैन्यत्रयेण प्रदत्तेन गॉड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सैन्यसेवाभ्यः निवृत्तिं स्व्यकरोत्। अयं समारोहः देशस्य सर्वोच्च सैन्याधिकारिरूपेण तदीय विशिष्ट कार्यकालस्य समापनस्य प्रतीकः अवर्तत। समरस्मारके पुष्पाञ्जलिं समर्प्य जनरल चौहानेन उक्तं यत् सैन्यत्रयस्य गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानेन सह सेवानिवृत्तिः तस्मै अत्यन्तं सम्मानप्रदं वर्तते। जनरल चौहानः गतशताब्दस्य 81वें वर्षे भारतीयसेनायां सेवाम् अवाप्य 40 वर्षेषु देशसेवायां महत्वपूर्णपदेषु कार्यम् अकरोत्। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यः जनरल अनिल चौहानस्य स्थानं स्वीकरिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामन्त्री पीट हेग्सेथ इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्यकार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मन्त्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारो प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया 20-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा

0: ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं सप्तवादने स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: और हो भोला भैया?
0: ठीक हो बिरजू भैया?
1: खेती किसानी का हाल बतावा भैया, धान सान के बिया सिया डलला के भी पछुएल तू?
0: सब निमन हो बिरजू भैया, अपन बतावा बिया बाल पड़ गेल कि ना पड़ल?
1: देखा भैया, हर साल तो हम देखा रोहिणी नक्षत्र में डाल लेते हैं बिया हो, लेकिन देखा सो इतना करारा के गर्मी पड़त है ना कि एक ही देखते हुए हम सोचत हैं कि असो अदरा में तीन दिन बरका के अब बिया के डाली। अब वो समय देखा भैया, समय भी बड़ा अनुकूल हो जाला।
0: कहे ना भैया,
1: समय अनुकूल हो जाला, आ इधर ले झाँ उधर ले फू भगवान दऊ भी लरक जावा, ऐसे बिया भी बड़ा भैया समय के पाए के बड़ा अच्छा बढ़वार भी होकर होले। आ तब ले खेत के भैया तैयारी करके पानी सनी लगा के ले उसे हो, आ बढ़िया से दो चार चास जोत के, आ पहले से देखा भैया ढैचा उचा हमन बोल ही रही ले जा, ओके बढ़िया
0: से उल्टवा दे।
1: हाँ,
0: तो समय से खाद तैयार हो जाए।
1: अरे ओके भैया, जब ओके पलट के या सात आठ दिन छोड़ देबा हो ना
0: भैया,
1: तो सार के एकदम हमारे जो मित्र केचुआ भैया लोग हुआ ना, माटी चाल के एकदम रबड़ी जैसे बना दिए, अब महकाय लगी एकदम सनहना नियर। अब एक बात तो भैया देखा में लगावा ना धान।
0: कहे ना भैया, देखा कि कछुआ जो हो ना ये अपन किसान मित्र भी हों। अब बिरजू भैया एक बात तू सही कहला है कि असो देखा ना गर्मी जो ना सब रिकॉर्ड तोड़त
1: बहुत भैया। देखा भैया प्रकृति भी हमन की देखा यही से कहले भैया कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करे चाहिए,
0: करे के चाहिए।
1: आप पेड़ पौधा भैया खूब लगावा, तब भैया अपन मौसम भी बढ़िया से मिली, वातावरण भी शुद्ध रही। आ देखा ये भैया,
0: हाँ,
1: खेती किसानी का बात हम जो करत है ना, तो देखा हमन के बाप दादा बहुत पहले से परंपरागत है खेती करत आवत हुआ, तो इनमें हमन के देखा थोड़ा सा हट के अब भोला भैया बदलाव चाहत है।
0: कहे ना भैया,
1: देखा है मैं बदलाव कह के हमन के अतने में व्यवसायिक खेती अपनावे के चाहत।
0: एकदम हमरे मुँहे के बात छीन लेला हो भैया। व्यवसायिक खेती का नाम लेला है ना, तो एकर यह ना मतलब हो बिरजू भैया कि जौन खेती बाजार के मांग के हिसाब से कैल जाओ और अपन आमदनी उसे बढ़ावल जाओ।
1: हाँ भैया, जैसे मशीनीकरण से कौनो काम ओके एकदम मशीनीकरण से करा, जैसे ओके का बाकी खेती अपन न जैसे उन्नत किस्म के बीज लियावा, अपन जिला की कृषि इकाई पर जाए के आ वहाँ अधिकारी लोग हैं उनसे पूछा पछोरा आ समझ बूझ के आ बिया बाल के खरीदा आ ओके समय से डाला आ बढ़िया से तकनीकी मशीन द्वारा ओके बढ़िया से कल्टीवेटर वगैरह से जुताई करावा।
0: बिल्कुल
1: हाँ, ओके बढ़िया से तब ओके कौनो भी फसल की खेती आप करी है तो मुनाफा बढ़िया।
0: कहे ना भैया, ये व्यावसायिक खेती में देखा तरह तरह का अपन जो औषधि होनी बिरजू भैया, ओमें देखा अपन जैसे एलोवेरा हो गल,
1: अरे
0: अश्वगंधा हो गल, लेमन ग्रास हो गल, एकर का होना कि देखा बिरजू भैया एकर जोन औषधि बनेला बड़ा कारगर होला, और एकरे साथे साथे एकर जोन मूल्य हो जोन दाम हो मुनाफा ई भी बढ़िया किसान भाई लोगन के मिलेला। इतने ना बिरजू भैया, नगदी फसल में देखा अपन कपास हो गल, जूट हो गल और गन्ना हो गल, येहू का खेती हम लोग के करे के चाहिए, काहे कि एकर नगदी नगदी एकर अच्छा मिलेला और आमदनी ऐसे हम लोग का किसान भाई लोगन का बढ़ेला।
1: काहे ने काहे ना भैया, देखा यही से हमन के भैया आयुर्वेद के दवाई बनेले हो।
0: बिल्कुल
1: तरह तरह का देखा भैया।

0: पतंजलि के तहत ही कुल जितना भी एलोवेरा का कुल आवत बा आ बढ़िया से अपन देखा आदमी के प्रयोग करत बड़ा आ शरीर के भी बढ़िया स्वास्थ्य वर्धक शरीर भी रहते।
1: अब बिरजू भैया इतने ना देखा बागवानी के तहत अपन सेब हो गल, अनार हो गल, नींबू हो गल, फल फूल हो गल, ये सब ऐसा मतलब सीजनी
0: खेती है भैया ना,
1: कि जैसे हम लोग बाजार में ले जाके अधिक से अधिक आमदनी कमाल जा सकला। एमएन बिरजू भैया देखा सबसे जोन फूल के खेती हो ये देखा कोनो तीज त्यौहार पड़ जाए, शादी विवाह पड़ जाए, कोनो कार्यक्रम हो तो देखा फूल का हर जगह मांग होला और दो पैसा ऐसे बढ़िया मिलला। और एकरे साथे साथे बिरजू भैया अपन पूजा पाठ हो गल, कोनो तीज त्यौहार हो गल, नवरात्रि का माई का दिन हो गल, ते में देखा कितना लाल लाल अड़हुल के फूल होला, गेंदा का फूल, चमेली, बेला, तो ई सब कैले से ना हम किसान भाई लोग अपने आमदनी के बढ़ा सकल जला। का
0: देखा भैया कहा जला कि ये खेती व्यवसाय करी हैं तो आमदनी जब बढ़ी तो भैया हम तरक्की करब,
1: बिल्कुल
0: आ हम तरक्की करब तो हमार देश तरक्की करी। आ हमार देखा भैया देश जौन है ना कृषि प्रधान देश है जला, तो ऐसे हमन के सर्वप्रथम व्यवसायिक खेती पर बहुत ध्यान देव छी। आय में देखा हो रोजगार का भी बड़ा अवसर मिलला, गांव घर में जो बेरोजगार बा ओके दो पैसा का रोजगार भी मिल जाई, आ ऐसे ओहू के भाई पेटपार्जन होई, पालन पोषण होई। आ एकरे साथे साथे भैया देखा हो व्यवसायिक खेती के साथे साथे यही में हमन के पशुपालन के अंतर्गत डेयरी बा,
1: मुर्गी पालन हो गल भैया, मधुमक्खी पालन हो गल और बकरी पालन हो गल, एकरे साथे साथ जीवन का हम लोग तरक्की के रास्ता पे जा सकल जाला।
0: बहुत बहुत बहुत फर्ज बताई।
1: और बिरजू भैया इतने ना अगर देखा जब हमन तरक्की करल जाई तो भाई उमेन देश का भी तरक्की हो।
0: अब देखा ये भैया हो अब नगदी फसल में आपके एक ठे चाय की खेती हो गई, कहवा हो गल, कपास हो गल, जूट हो गल, एकर भी मशीनीकरण से व्यापक, जैसे देखा व्यवसायिक खेती का मतलब है कि एक बार आमदनी ज्यादा जैसे रुपया पैसा लागत ज्यादा लगे ले, रिस्क भी रहला लेकिन भैया देखा मुनाफा भी बहुत अच्छा होला। तो ऐसे हम तो कहब कि भैया परंपरागत खेती तो बाप दादा करते आवत हुआ, आ हमन के व्यवसायिक खेती अपनाए के देखा। व्यवसायिक खेती से ये है भैया ना कि मुनाफा हमन के बहुत बढ़िया हो गए। अच्छा साथ साथ देखा व्यवसायिक खेती करे पर ये भी ध्यान देवे के है कि हमके अपने समय समय पर माटी के भी जांच करावल बहुत जरूरी,
1: बहुत जरूरी है। इतने ना बिरजू भैया व्यवसायिक खेती में ना देखा आप तरह तरह का आधुनिकीकरण तकनीक आ गई है, इमें देखा जैसे ट्रैक्टर हो गल, हार्वेस्टर हो गल, ड्रिप सिंचाई हो गल और एकरे साथे साथे उन्नत बीज हो, जैविक खाद के उपयोग तेजी से बढ़ रहा बा। और इतने ना भैया किसान लोगन मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से मौसम और बाजार का जानकारी घर बैठे प्राप्त कर ले बना।
0: एकदम सही कला भैया, देखा हमार जो देश है ना अब इतना तरक्की करता, देखा अभी सरकार भी व्यवसायिक खेती करे बदे ना बड़ा समय ला कि प्रोत्साहन देते,
1: बिल्कुल,
0: तो जेकरे रुपया पैसा ना है भैया ओके सरकार सब्सिडी भी देते आ उसे अपन ले के बैंक से अपन आर्थिक अनुदान ले के अपन खेती करा
1: करा,
0: आ फिर समय पर होकर अपन भाई चुकता कह दा आ उसे तुहार काम भी निकल जी, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रही।
1: अच्छा बिरजू भैया पहले के समय में रहल कि हम लोग के दादा बाबा जो खेती करत रह परंपरागत तो वो खाली अपने परिवार के निर्वहन पेट चलाए खातिर धान और गेहूं का खेती होत रहल, बसरते अब का हो ना अब एक व्यापक रूप अपने खेती किसानी के व्यवसायिक खेती की ओर बढ़े के हुई और अपने जो स्तर के और बढ़ाए खातिर अपने आमदनी के बढ़ाए
0: एकदम सही कला। देखा पहले ना देसी धान देसी गेहूं ही बोवा, अब भैया देखा गोबर के खाद पर हमन के बाप दादा निर्भर रहा
1: भैया हो, खेती गोबर के खेत जो खाद पड़े ओमन देखत रहला कितना मिठास रहत रहला।
0: हाँ भैया लेकिन काम है भर न होता रहो उसे जीवन का निर्वाह।
1: हाँ ये बात सही कहला।
0: हाँ तो हमन के भैया व्यवसायिक खेती कैले से ही है कि जीवन निर्वाह भी होई आ कुछ आमदनी हो जी, जैसे शिक्षा बाल बच्चन के बा आगे बाद दवा बा इकुल के समय ला कि दो पैसा बची तब न काम आई हो
1: है ना भाई।
0: तो ऐसे बहुत युद्ध स्तर पर हमन के व्यवसायिक खेती अपनाए के

0: आई अपने जीवन के समला सफल बनाओगे है, साथे साथे तरक्की हमन करल जी, तो हमन के देश भी करी,
1: बिल्कुल करी।
0: ये भैया देखा बात बत कही तो हमन के बड़ा बतियाओ के बाद, आ देखा अब कुछ मतलब हमन हमन पंच लोग के तनी सने सुनो।
1: बिल्कुल
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: बिरजू भैया,
0: हाँ भैया, संदेश तो होगा।
1: अब देखा अपने पंचायती में बात बत कही आगे भी हुई और मन फेर भी हुई, बाकी उसे पहले ही देखा अपने एक नगद के बातचीत हो, बीज प्रौद्योगिकी का महत्व डॉक्टर अर्चना सानेल और सतीश कुमार यादव भैया का एक बात बत कही हो, हम लोग भी सुना ले और पंच लोग के भी सुनवा दे भैया।
0: एकदम सुनवा दे भैया।
5: आज हमने लोग के बीच में आयल हैं डॉक्टर अर्चना सान्याल जी, जे की वैज्ञानिक है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र सहनसापुर जखनी वाराणसी में। आज हमने लोग इनसे जानल जाए कि बीज प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है अपने खेती में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मैडम आपका हमने ये कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
6: धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।
5: तो जैसन कि आज हमने के विषय है कि बीज प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, तो सबसे पहले ये बताएं कि बीज प्रौद्योगिकी होला का चीज।
6: देखिए, जो कृषि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया है वो बीज से ही प्रारंभ होती है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पुराणों में भी एक श्लोक है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते तत्र संपद्यते, मतलब अगर अच्छा बीज अच्छी धरती पे जाएगा तो बहुतायत में उसका उत्पादन होता है। तो विज्ञान की यही एक शाखा है जिसमें कि हम बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, भंडारण और वितरण की जो उन्नत विधियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों तक प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध कराना है।
5: तो अच्छा, ये हमारी खेती में महत्वपूर्ण काहे हो जाता है इस समय?
6: देखिए, क्या होता है कि जो अगर आप बुआई करते हैं, किसान बुआई करने जाते हैं, तो उस समय अगर वो उनके जो बीज हैं, जो कि एक आधारशिला है उत्पादन की, अगर उन बीजों को अच्छे तरीके से वो बोएंगे नहीं या अच्छे बीजों का या अच्छी किस्मों का चुनाव नहीं करेंगे तो सीधा सीधा जो फर्क है वो उनके उत्पादन पे पड़ता है। कहीं ना कहीं उनकी लागत भी ज्यादा लग जाएगी और उत्पादन कम होगा तो वो उसका प्रभाव नहीं झेल पाते हैं।
5: तो ये बताएं, आप तो सब्जी अनुसंधान केंद्र से बानी, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भैया उनको बताएं जे इस समय सब्जी लगावत है, जो है जे लगैले है या आगे भी जे लगाई, तो वो लोग अपनी सब्जी का जो बीज है ओकर कैसे रख रखाव करें और ओकर कैसे कह लो कि देखभाल लोग करें।
6: हाँ, देखिए, मैं थोड़ी चर्चा इस पे भी करना चाहूंगी कि जो सब्जी के बीज होते हैं ना, वो थोड़ा उनका जो उत्पादन होता है और उनका जो रख रखाव होता है ना, बाकी फसलों से थोड़ा अलग होता है।
5: अच्छा।
6: क्योंकि क्या होता है कि ये विटामिन्स, ये खनिज, फाइबर, इन सब के एंटीऑक्सीडेंट के प्रचुर मात्रा में इनमें पाई जाती है, लेकिन जो उत्पादन तकनीकी होती है वो थोड़ा अलग होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जी होती है वो अन्य फसलों से ज्यादा संवेदनशील होती है, इसके अपेक्षाकृत इनमें जो लागत होती है वो भी ज्यादा लगती है। जैसा कि आपको पता होगा इनमें जो निराई होती है, गुड़ाई होती है, लगातार चलती रहती है, मतलब जो कृषि की क्रियाकलाप होती है वो ज्यादा लगती है। इस वजह से क्या इनकी लागत ज्यादा हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो गुणवत्ता का जो असर है सीधे सीधे इनमें जो बाजार का जो मूल्य है उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी, भिंडी, ऐसी सब्जियां जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग और उत्पादन जो है गुणवत्ता दोनों को इनके बढ़ा देता है। और आपने जैसा बोला कि बीजों का रख रखाव कैसे करें, तो देखिए पहले जो बीज होते हैं उन बीजों को हमेशा कम नमी वाली, जहाँ आर्द्रता कम हो और तापमान भी ज्यादा ना हो, वैसी जगहों पे रखें। यहीं पे कहीं ना कहीं किसान भाई जो लोग होते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और बीजों का जो भंडारण है वो सही से नहीं हो पाता। और वो भी मैं जैसा बताऊं कि इसकी भी जो तकनीकी है वो हम जो बीज प्रौद्योगिकी है उसके अंतर्गत ही इसको अभी अध्ययन करते हैं।
5: तो तकनीकी के बारे में बताएं कि लोग

0: अपन जो बीज उत्पादन करत हो उसमें कौन तकनीकी का ध्यान रखा या कौन तकनीकी अपनावा?
1: हाँ जी, देखिए क्या होता है कि जो बीज उत्पादन होते हैं उसमें विशेष सावधानी हम रखते हैं, और ये समय समय पर अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि जब हम किस्मों को लगाते हैं, विभिन्न किस्मों को लगाते हैं, तो उनकी जो अनुवांशिक शुद्धता होती है उसको बनाए रखने के लिए हमें हमेशा विभिन्न किस्मों को एक उचित दूरी पर लगाना चाहिए,
0: अच्छा
1: ताकि कहीं गलती से भी एक किस्म का जो परागण है किसी दूसरे किस्म के फूलों को परागित ना कर पाए। इससे क्या होगा कि जो अनुवांशिक शुद्धता है वो उनकी बनी रहेगी। इस वजह से हम उनके अलगाव दूरी का उपयोग करते हैं। दूसरा आता है कि हम रोगिंग करें। जब बीजों को लगा दिया जाता है, उनसे पौधे बन जाते हैं, तब भी आप देखोगे, मान लो कि आपने बीज किसी किस्म का लिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी अवस्था में ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ अलग है, ये
0: अच्छा
1: पौधा बाकी पौधों से अलग लग रहा है, तो उस समय उसकी जो विशुद्धियां हैं उनको हमें अलग करना पड़ता है। तो इसी को हम रॉगिंग कहते हैं। और साथ साथ में जो परागण नियंत्रण जो है सही समय पर करना चाहिए, ये जो संकरित जिसे हम हाइब्रिड बीज कहते हैं उनके उत्पादन में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ
0: हाइब्रिड बीज के बारे में जो आप बताओ थे, तो एकर का योगदान है अपने खेती किसानी में?
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही एक तरह से प्रश्न किया। किसान भाइयों, देखिए जो सब्जी फसलें होती हैं ना, इनमें हाइब्रिड बीजों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और इसकी दो जनरली जो ज्यादातर क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड बीज होते हैं दो अलग अलग अभिभावक किस्मों के संकरण से तैयार किए जाते हैं, और उनके जो लाभ हैं वो ये हैं कि इनसे अत्यधिक उत्पादन मिलता है, इनमें एक तरह की एक रूपता होती है। जैसे
0: एक
1: जो
0: रूपता
1: फल होंगे
0: मतलब?
1: या पौधे होंगे वो एक रूप एक समान होंगे। जैसे आप
0: अच्छा
1: अगर मान लीजिए आप बैगन का पौधा लगा रहे हैं, लंबा वाला या गोल वाला, अब आप लंबे वाले में भी एक लंबाई होगी ना, जैसे 10 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, तो सारे ही जो फल होंगे वो लगातार एक ही तरह के होंगे, जिससे क्या होगा जब आप इनको मंडी में बेचने जाएंगे तो आपको भाव बहुत अच्छा मिलता है इससे। इसके साथ साथ जो हमारे जो हाइब्रिड होते हैं बीज, संकरित बीज होते हैं, इनमें जो हमारा जो पर्यावरण जो बदल रहा है ये उसके अनुकूल सहनशील भी होते हैं, ठीक है। साथ साथ में कीट पतवार इनसे भी ये सहनशील होते हैं,
0: अच्छा,
1: और इनका बेहतर आकार होता है, रंग होता है और स्वाद होता है।
0: तो एकर मतलब कि बाजार में भी अच्छा मूल्य मिलत हुई।
1: हाँ
0: अच्छा, बीज प्रसंस्करण और ही भंडारण के बारे में तीन किसान भैरों के बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, जैसे जब बीज का उत्पादन हो जाता है तो बीजों को हमें उनकी जो भंडारण रखने के लिए, उसके लिए तय इनके जो इनमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है,
0: हाँ,
1: उसको घटाना पड़ता है ताकि
0: अच्छा
1: हम इसका भंडारण उचित समय के लिए कर सके। जैसे आपको पता है कि अगर एक सीजन में आप किसी सब्जी को उगाते हैं या किसी फसल को उगाते हैं, तो अगला सीजन कम से कम 6 से 7 महीने बाद आता है, किसान जो भाई होते हैं उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं। तो इस बीच में 6 से 7 महीने के बीच में आपको इसकी जो शुद्धता है, साथ साथ में जो उसकी अंकुरण क्षमता है, उसको आपको बनाए रखना है। इसके लिए हमें इसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिसमें से इसमें जो अशुद्धियां हैं, खरपतवार हैं, टूटे हुए बीज हैं, या फिर जो छोटे छोटे बीज हो चुके हैं उनको निकालना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसका जो हम कहते हैं भंडारण उसको किया जाता
0: अच्छा,
1: है।
0: भंडारण कैसे करें लोग? जैसे गांव में तो बहुत लोग क्या करें ना, गेहूं के बीज तो लोग पहले भूसा में रखें या कुछ दवा वगैरह डाल के रखें, सब्जी के बीज बदले वो लोग क्या करें?
1: देखिए सब्जी के बीज जो होते हैं ना, गेहूं और धान के बीजों से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं,
0: जी
1: तो क्या होता है कि इनमें इनका जो भंडारण होता है उसको हम ऐसे सुरक्षित जगह पे करते हैं जहाँ पे नमी बहुत कम हो, नमी के साथ साथ वहाँ का तापमान जो है बहुत ज्यादा ना हो। और अगर आप किसान भाई अगर ऐसा अगर कोशिश करें कि उसको अंधेरे में रखा जाए, अंधेरे वाली जगह पे जहाँ पे रोशनी ज्यादा ना पड़ती हो, तो वो एक तरह से उचित तरीके से उसको रखा जा सकता है, और उसमें जो उसकी अंकुरण क्षमता है उसको मतलब कि एक समान रखा जा सकता है अगले
0: अच्छा,
1: सीजन तक के लिए।
0: कहलो कि बीज परीक्षण का भी कोनो एमए योगदान है या उपाय है?
1: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगले सीजन में इसकी बुआई करनी है, तो तब तक के लिए बीजों की जो अंकुरण क्षमता है उसको निर्धारित करने के लिए बीजों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में क्या होता है कि इनमें अंकुरण प्रतिशत की जांच होती है, उनकी भौतिक शुद्धता की जांच होती है, साथ साथ में इनमें नमी की मात्रा है बढ़ी है या घटी है, और उसमें अगर कोई रोग उपस्थित हो गया हो भंडारण के समय तो उसको भी सुनिश्चित किया जाता है, ताकि जब किसान जो है इन बीजों को खरीदे और अपने जमीन पे लगाए तो उसका जो उत्पादन हो वो बढ़े।
0: परीक्षण के बारे में जो घरेलू कुछ उपाय है उतनी हमें भैया लोग
1: हाँ,
0: बताएं।
1: ये आपने बहुत ही, आप कह सकते हैं, अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैं एक बीज वैज्ञानिक हूँ, इसके माध्यम से मैं सभी जो किसान भाई हैं उनमें संदेश देना चाहती हूँ कि जो आप बीज खरीदते हैं, आप कहीं से भी खरीद रहे हैं, मार्केट बाजार से खरीद रहे हैं या किसी संस्थान से खरीद रहे हैं या ब्लॉक से खरीद रहे हैं, तो सबसे जो सरल उपाय है बीजों का परीक्षण

0: वो ये है कि आप अपने घर में ही उसका अंकुरण क्षमता जांच लीजिए, और उससे पहले जब आप कोई पैकेट खरीदते हैं बीजों का, तो उसके पीछे जो है लिखा होता है, प्रिंट होता है कि इसमें जो अंकुरण क्षमता है, मान लीजिए कि उसमें 80% लिखा है, तो आप क्या करिए, घर पे उन बीजों को आप मान लीजिए कि 80 बीज, 100 बीज नहीं लगा सकते। अगर गेहूं और धान के बीज ला रहे हैं तो तुम्हें 100 और 100 बीज लगाए जा सकते हैं। तो आप क्या करिए, 100 बीजों को लीजिए, 50-50 में उसको विभाजित कर दीजिए, और उनको अलग अलग, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, अखबार होता है या सादा कागज होता है, तो उनमें इन बीजों को लाइन से उचित दूरी पर, मतलब 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर रख के इनको भिगा के अच्छे से रोल कर दीजिए। जैसे मोड़ते हैं ना, पेपर को मोड़ा जाता है ना, उसको मोड़ करके घुमावदार गोल करके उसको कहीं अंधेरे वाली जगह पे रख दें, और उसमें हमेशा नमी को बनाए रखें। आप देखेंगे 7 से 8 दिन बाद सब में अंकुरण होने लगता है। वहां से आप पता कर सकते हैं कि जो हमने बीज खरीदा है, हम जिसको हम लगाने जा रहे हैं, क्या उसकी अंकुरण क्षमता उतनी है जितना कि उसके रैपर पे लिखा हुआ है, पीछे पैकेट पे। इससे क्या होगा, आप सुनिश्चित भी हो जाएंगे। अगर उसमें अंकुरण क्षमता कम आती है तो आप जाकर के दुकानदार से या जहां से, ब्लॉक से, आप उसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: ऐसे फायदा क्या क्या रही हमारे किसान भाइयों के, इतनी आप बताएं, कहाँ से कि आप वैज्ञानिक मैडम हैं और हमारे किसान भैया लोग सोचे ला या जानल चाहेला कि जो वैज्ञानिक लोग हों उनसे सुनल भी चाहेला कि हमके का का फायदा हुई इसे, तो इतनी फायदा के बारे में बताएं।
0: जी, किसानियों के लिए लाभ देखिए, अगर आप उन्नत बीज प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो आपको अधिक और स्थिर उत्पादन मिलेगा, बेहतर बाजार का मूल्य मिलेगा, साथ ही साथ आपकी लागत में कमी भी होगी, तो जोखिम में जो है इस कमी भी होती है। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सब्जी के जो बीज होती है ना, सब्जी फसलों के बीज होते हैं, उनके माध्यम से न केवल जो उत्पादन बढ़ती है जबकि पोषण की जो सुरक्षा है ना, वो भी सुनिश्चित होती है। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनमें प्रचुर मात्रा में जो खनिज, लवण, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी छुपी हुई भूख है, जिसे हम हंगर, हिडन हंगर बोलते हैं, क्योंकि हम पोषण, हम कैलोरी तो लेते हैं धान और गेहूं के माध्यम से, लेकिन जो हमें न्यूट्रिएंट की जो कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, वो सब्जियों से ही पूरी हो सकती है। तो ये जो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ ये पोषण सुरक्षा को भी मतलब कि एक तरह से सुदृढ़ करते हैं।
1: चलत चलत आप हमारे किसान भाइयों के का संदेश दिया चाहो?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बीज प्रौद्योगिकी कृषि विकास की रीढ़ है, और विशेष रूप से सब्जी उत्पादन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि किसानों को सही समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध हों, तो उनकी आय में वृद्धि के साथ साथ देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा भी मजबूत होगी। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: तो डॉक्टर अर्चना सान्याल जी, आज आप हमने उनकी कार्यक्रम कृषि जगत में एनी एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखा भोला भैया।
3: हाँ बिरजू भैया,
2: बहुत बढ़िया तरीके से समझ लगा कि भैया बीज प्रौद्योगिकी के महत्व पर डॉक्टर अर्चना सन्याल से बहुत नीक नीक बात पूछलाँ, एकदम खोद खोद के सतीश भैया, सतीश कुमार यादव। आ देखा पंच लोग सुनल, देखा कितना बढ़िया से डॉक्टर साहब आप भाई डॉक्टर अर्चना सन्याल जी बतौली हैं कि भैया बीज के जौन भंडारण करत हुआ तो बहुत नम उतना जगह न रहे आ तापमान भी बहुत अधिका न रहे, आ ओके बढ़िया से सुरक्षित भंडारण करा। आ एक चीज यो कली है,
3: हाँ बिरजू भैया,
2: भैया देखा सब्जी के जौन बीज है बड़ा सूक्ष्म चीज होला, तो ओके जब बीज तू उन्नतशील बीज जब खरीद के लिए अवत हुआ केंद्र से, कहीं से, बाजार से चाहे दुकान से, तो ऊपर देखें पीछे जो अथुआ ओके देख ला प्रिंट,
3: हाँ,
2: कि भैया ओकर जमाव कितना है,
3: कितना
2: 80% से कितना है, तो ओके समय ला भैया, जैसे गेहूं तो बा भाई अनाज बा, तो एक तो 100 दाना 50 दाना के अपने घर में ही कहीं जमाव बदे डाल सकला, लेकिन भैया ये बहुत महीन बीज होला, कीमती होला, तो एक कुछ बीज जौन बा न तो ओके ले के कागज का रोल बना के ओके भिगोए के अपने घर पर आ ओके जांच ला, आई बीज देखा 7-8 दिन में बताओ तलिए कि अंकुरित हो जाए, तो देखा बड़ा मूल्यवान बात बतौली हैं आप, आए कि किसान भैया अपने जीवन में अमल करें लोग आ बढ़िया से उन्नतशील बीज लेके या खेती करें। आ देखा ये भैया बात बत कही तो होबे करी, आ जबले अपने पंचायती में ना,
3: हाँ बिरजू भैया,
2: मर मनसाय ना होला ना तो बढ़िया ना होला, तो भैया केकर गौने सुनवाओ थोड़ा बोला भैया।
3: बिरजू भैया देखा गीतांजलि मौर्या क ई किसानी गीत हो, पंच लोग भी ध्यान से सुने और हम लोग सुन जाए।
2: अरे एकदम सुनवा रच के भैया।

0: बाटे सबसे महान ई धरतिया, गीतांजलि मौर्या का ई किसानी गीत कितना सुंदर रहल भैया। तो देखा गीत गवनई तो हो गल, बिहाने कभी कार्यक्रम पंच लोगन के बता दे ले कल।
1: देखा भैया कल जो अपने बिहाने जो रही कार्यक्रम ना, वो समझ ला कि 6:05 पर खेती के बातें में सामयिक कृषि कार्य ये विषय पर जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह। आ देखा भैया यही लगले हमन के शाम, यही टाइम शाम के समय ना 6:30 पर कृषि जगत में अपने विषय रही प्रसव काल में पशुओं की देखभाल, ये पर बातचीत करी है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे से सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया। तो ये भैया देखा हो,
0: हाँ,
1: अब हमन के बेला भी हो गल चले कर जला।
0: हाँ,
1: तो पंचो
0: राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। कृषि जगत प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

श्रोताओं का कार्यक्रम का ये पहला गीत था किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और हेमलता की आवाज़ें। फिल्म का नाम ज्वालामुखी और रचना अनजान की। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

श्रोता अनुराधा पौडवाल और साथी की आवाज़ फिल्म का नाम मरते दम तक। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए हमारा आप साथ साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज़, फिल्म का नाम मौसम, संगीत मदन मोहन का। और इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये पहली सूचना हमें प्राप्त हुई है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद

जौनपुर से। सूचना अनुसार मोहन यादव, पिता का नाम बैजनाथ यादव, निवासी मेहरावां, थाना सराय ख्वाजा, जनपद जौनपुर। घर से मेहराती बाज़ार गए और वहीं से कहीं चले गए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 65 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, ये नीला कुर्ता और लुंगी पहने हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को कृपया दे सकते हैं। ये अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से ही प्राप्त हुई है। सूचना अनुसार रंजना जायसवाल, पुत्री उमेश जायसवाल, पता चोरारी, थाना मडियाह, जनपद जौनपुर, दिनांक 15/4/2026 सुबह 10 बजे से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 20 वर्ष, इकहरा बदन, रंग सांवला, चेहरा लंबा और ये छींटदार कुर्ता और नीले और काले रंग की जीन्स दोनों का मिक्स कलर पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी कृपया कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर को दे सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया लखनऊ से संप्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार की प्रतीक्षा करें।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए।

0: और इनकी तकनीक की का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
1: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 हाईटेक कमांड कंट्रोल।

0: कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: मीडिया वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।

0: नमस्कार विज्ञान यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है स्वरबेला के अंतर्गत दीपक कुमार शर्मा का काव्य पाठ।
1: शीर्षक है हमारा भारत। शीश मुकुट हिमालय जिनका छाती पर पावन गंगा है। शीश मुकुट हिमालय जिनका छाती पर पावन गंगा है। महिमा उस देश की गाता हूँ जिस देश की शान तिरंगा है। महिमा उस देश की गाता हूँ जिस देश की शान तिरंगा है। ताजमहल और लाल किला सी अद्भुत भव्य इमारत है। जहाँ ताजमहल और लाल किला सी अद्भुत भव्य इमारत है। सागर जिनका पांव पखारे वही हमारा भारत है। सागर जिनका पांव पखारे वही हमारा भारत है। सागर जिनका पांव पखारे जहाँ सागर सरिता झरना झीले और सुंदर बाग बगीचे हैं। जहाँ

पर भवरे हंसते हैं, जहाँ पर्वत पठार मैदान मरुस्थल खेतों में हरियाली है। रज रज की खुशबू अनुपम हवा धूप मतवाली है, रज रज की खुशबू अनुपम हवा धूप मतवाली है। जहाँ बादल की चादर ओढ़े सूरज चंदा इठलाता है, जहाँ बादल की चादर ओढ़े सूरज चंदा इठलाता है। पशु पक्षी का भी इस देश से अति गहरा नाता है, पशु पक्षी का भी इस देश से अति गहरा नाता है। जहाँ जाति धर्म में भेद नहीं सब मानव एक समान है, जहाँ जाति धर्म में भेद नहीं सब मानव एक समान है। सबसे सुंदर देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, सबसे सुंदर देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, सबसे सुंदर देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है प्रकृति ने हमें जीवन दिया है।

काल में मत जाना, समझो प्रकृति इशारों को। काल के गाल में मत जाना, समझो प्रकृति इशारों को, वरना देश मरुस्थल हो जाएगा, वरना देश मरुस्थल हो जाएगा। समझो और समझा कर रखना, प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, इसे सदा बचा कर रखना। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, इसे सदा बचा कर रखना। थल चर जल चर नभ चर और समस्त जीव चराचर, थल चर जल चर नभ चर और समस्त जीव चराचर, करता है सबको पोषित धरा अन्न फल फूल उगा कर, करता है सबको पोषित धरा।

इस धरती कौन सजाता है। सुनहले धूप रजत चांदनी से धरती कौन सजाता है। झिलमिल तारों से कैसे आकाश भर जाता है। झिलमिल तारों से कैसे आकाश

दिया है, इसे सदा बचा कर रखना। प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, इसे सदा बचा कर रखना। और मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है, तुझ पे मुझे अभिमान है। जिसने सींचा खून से अपने भूमि भारत माता की, जिसने सींचा खून से अपने भूमि भारत माता की, भला हम कैसे भूलेंगे कुर्बानी उस विधाता की। भला हम कैसे भूलेंगे कुर्बानी उस विधाता की। उन्हें दोबारा लाने का मन में मेरे अरमान है, उन्हें दोबारा लाने का मन में मेरे अरमान है। धन्य हो देश के वीरों, तुझ पे मुझे अभिमान है। धन्य हो देश के वीरों, तुझ पे मुझे अभिमान है। इस मिट्टी में झलक रही है आज उनकी निशानी, इस मिट्टी में झलक रही है आज उनकी निशानी। लिए प्राण हथेली पर दे दी जिसने कुर्बानी, लिए प्राण हथेली पर दे दी जिसने कुर्बानी। उस मिट्टी में खुशबू है जिसमें करोड़ों बलिदान हैं, उस मिट्टी में खुशबू है जिसमें करोड़ों बलिदान हैं। धन्य हो देश के वीरों, तुझ पे मुझे अभिमान है। धन्य हो देश के वीरों, तुझ पे मुझे अभिमान है। झूल पड़े जो फांसी पर समझ के झूला सावन का, झूल पड़े जो फांसी पर समझ के झूला सावन का। खाए लाठी और गोलियां रखे लाज हिंद देश पावन का, खाए लाठी और गोलियां रखे लाज हिंद।

इंद्रदेश पावन का। झुका दी जिसने गोरों की गर्दन, झुका दी जिसने गोरों की गर्दन, वे वीर महान हैं। झुका दी जिसने गोरों की गर्दन, वे वीर महान हैं। धन्य हो देश के वीरों, तुझपे मुझे अभिमान है। धन्य हो देश के वीरों, तुझपे मुझे अभिमान है। धन्य हो देश के वीरों, तुझपे मुझे अभिमान है। और मेरी अगली कविता का शीर्षक है मेरी माँ। अपने दुखों को हमेशा मुझसे छुपाती है मेरी माँ, अपने दुखों को हमेशा मुझसे छुपाती है मेरी माँ। मेरे लिए अनेक कष्ट उठाती है मेरी माँ, मेरे लिए अनेक कष्ट उठाती है मेरी माँ। मेरी नादान हरकतों पर पड़ोसी बार बार उलाहने देते हैं, मेरी नादान हरकतों पर पड़ोसी बार बार उलाहने देते, करके मेरी ही वकालत मेरी हर बात दबाती है मेरी माँ, करके मेरी ही वकालत मेरी हर बात दबाती है मेरी माँ। कहीं मेरी आदत न बिगड़ जाए, इसलिए कभी डांट कर कभी प्यार से मुझे बार बार समझाती है मेरी माँ। मेरी जिद और मेरी शरारत सबको क्रोध दिलाती है, मेरी जिद और मेरी शरारत सबको क्रोध दिलाती है, पर मुझे ममता के आंचल में छुपाकर मुझ पर इसने हर हाल में लुटाती है मेरी माँ, मुझ पर इसने हर हाल में लुटाती है मेरी माँ। नाना जी की लाई हुई मिठाइयाँ जब घर में ही चूक जाती है, नाना जी की लाई हुई मिठाइयाँ जब घर में ही चूक जाती है, अपने हिस्से का मेरे लिए बचाकर मुझको खिलाती है मेरी माँ, अपने हिस्से का मेरे लिए बचाकर मुझको खिलाती है मेरी माँ। मैं देर रात तक घर नहीं आता हूँ तो सब सो जाते हैं, मैं देर रात तक घर नहीं आता हूँ तो सब सो जाते हैं। मुझको तवे से ढकी गर्म रोटियाँ खिलाने के लिए खुद को जगाती है मेरी माँ, मुझको तवे से ढकी गर्म रोटियाँ खिलाने के लिए खुद को जगाती है मेरी माँ। मुझे हारता देख लोग मेरा उपहास न करें, इसलिए मंदिर की चौखट पर आंचल पसार कर मेरी सफलता के लिए भगवान को मनाती है मेरी माँ। मुझे हारता देख लोग मेरा उपहास न करें, इसलिए मंदिर की चौखट पर आंचल पसार कर मेरी सफलता के लिए भगवान को मनाती है मेरी माँ। मैं घर से निकलता हूँ तो संग उसकी दुआएं होती है, मैं घर से निकलता हूँ तो संग उसकी दुआएं होती है, मेरे घर न रहने पर छुप छुप के आंसू बहाती है मेरी माँ, मेरे घर न रहने पर छुप छुप के आंसू बहाती है मेरी माँ। और मेरी अगली कविता का शीर्षक है उनका उपहास। अजीब है ये हवाएं जो सदा उल्टी दिशा से आती रही, अजीब है हवाएं जो सदा उल्टी दिशा से आती रही, और अजीब है मेरी किस्मत जो हमेशा मुझे आजमाती रही, और अजीब है मेरी किस्मत जो हमेशा मुझे आजमाती रही। किंतु जिंदगी के तूफानों में भी मैंने कदम पीछे नहीं खींचा, किंतु जिंदगी के तूफानों में भी मैंने कदम पीछे नहीं खींचा, क्योंकि उनकी तानों भरी बात मुझे बार बार याद आती रही, क्योंकि उनकी तानों भरी बात मुझे बार बार याद आती रही। जब कभी सोचता हूँ अपने भविष्य के बारे में, जब कभी सोचता हूँ अपने भविष्य के बारे में, मुझे अनायास ही याद आती है अतीत की बातें, मुझे अनायास ही याद आती है अतीत की बातें। मेरी असफलताएं उन्हें बहलाती रही, मेरी असफलताएं उन्हें बहलाती रही, किंतु मेरी सफलताएं उन्हें जलाती रही, किंतु मेरी सफलताएं उन्हें जलाती रही। मैं ठोकर खा खा कर गिरता रहा और वे मुझे देखकर हंसते रहे, मैं ठोकर खा खा कर गिरता रहा और वे मुझे देखकर हंसते रहे। आए देता हूँ उन्हें

0: तहे दिल से धन्यवाद। आज देता हूँ उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि क्योंकि उनका उपहास ही मेरे इरादों को मजबूत बनाती रही, क्योंकि उनका उपहास ही मेरे इरादों को मजबूत बनाती रही।
1: श्रोतों, अभी आप सुन रहे थे स्वरबेला के अंतर्गत दीपक कुमार शर्मा से उनका काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:46 और 17 सेकेंड आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

श्रोताओं कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था महबूब की मेहंदी। रचना आनंद बख्शी की थी। कार्यक्रम रसरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। 7:53 और 6 सेकेंड।

श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सबूत और संगीत बाप्पी लहरी का था। इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है।

0: जब तक तेरा साथ नहीं।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मेरे वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं बेगम अख्तर। यह है कार्यक्रम की पहली रचना।

श्रोताओं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज की कलाकार थीं बेगम अख्तर। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन EIR ऐप और वेव्स ओटीटी पर।

0: आ गया मनोरंजन का नया अंदाज, दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस यानी डीटीएच। मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, 30 से अधिक लोकप्रिय टीवी चैनल आपके फिंगर टिप्स पर, साथ ही आकाशवाणी के विविध भारती सहित 12 चैनल। मनोरंजन और जानकारी का ये पिटारा खुलता है सिर्फ एक छोटी सी डिश और सेट टॉप बॉक्स के जरिए, जिसके लिए आप चुकाते हैं छोटी सी कीमत सिर्फ एक बार। केबल कनेक्शन का मासिक शुल्क अब नहीं, दूरदर्शन के डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस। मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। डीटीएच यानी दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सर्विस, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1240 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 8:15 और 18 सेकेंड। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी, और इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं कार्यक्रम का ये पहला गीत सुरेश फोटकर की आवाज़, फिल्म का नाम सदमा, संगीत इलैया राजा का और रचना है गुलजार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसमाधुरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। यह आवाज़ थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम था शुभकामना। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने हमारे आप साथ साथ। 8:27 और 32 सेकेंड।

श्रोतम कार्यक्रम फिल्म संगीत का आप सुन रहे हैं रसमाधुरी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़। फिल्म का नाम था सिंदूर और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, रचना आनंद पक्षी और समय 8:33 और 52 सेकेंड।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, फिल्म का नाम सितमगर और संगीत राहुल देव बर्मन, रचना मजरूह, कार्यक्रम रसरंग तो नहीं, ये है कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसमाधुरी। और अब ये गीत आइए सुने हमारा साथ साथ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में रसमाधुरी कार्यक्रम के आप सुन रहे थे आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें। फिल्म का नाम तुम्हारी कसम और संगीत राजेश रोशन का, रचना आनंद बख्श की थी। और इसी रचना के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रिले होकर हमारे दिल्ली केंद्र से कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग

0: शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा

पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय

किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिव कुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असम्बली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असम्बली ने इत्तफाक राय से डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डी के शिव कुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर दिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्दर रमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीर आला के चैम्बर में सिद्दरमैया के साथ अलहदा अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डी के शिव कुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डी के शिव कुमार को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया कि डी के शिव कुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों किसानों और गाँव को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मजकूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बर वक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतल्लिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राब्ताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवाजन इस्तेमाल और मिट्टी की जाँच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फरोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई जहानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोर्ड के तवसुत से लोग गुफ्तगु के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निजाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख

0: होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, एमएसएमई इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूने मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
2: में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का आज की बड़ी मशीनों में, सब जगह परमानेंट मैग्नेट और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमराह मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वक्त भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली के खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीक़ेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में

तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले दो दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिना रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगमील से बिना रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में तीन T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत और गज़लों का अंजुमन, और इस महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे, और कार्यक्रम आपकी नज़र है अंजुमन, गैर फिल्मी गीत और गज़लों पर आधारित। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1,242 किलोहर्ट्ज़, DTH DRM 1,233 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर।

श्रोतांकारी क्रम आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का अंजुमन आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से मीटिंग पे 241.5 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह की आवाज़ में ये रचना, और इसी रचना के साथ ही आज का अंजुमन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से ठीक रात 10 बजे। कृपया प्रतीक्षा करें हमारे अगले प्रसारण की।
1: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
2: अ टॉप ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
1: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
2: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
1: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
2: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
1: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यार।

0: अरे मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली।

0: द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से

अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।